मित्रों, जब धरती किसान की मेहनत से, अन्न से परिपूर्ण होती है तो किसान के साथ साथ धरती भी खुशी महसूस करती है। इसी तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने, उसे साफ रखने वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके ज़रूर खुशी का अनुभव करेंगे।

कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। लविन शिबला फिल्म से ये गीत था। 1960 रिलीज फिल्म, इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। मित्रों, जीवन का सबसे सुंदर एहसास है अपने देश अपनी धरती पर गौरव होना, और ये एहसास हम सभी को बिल्कुल होना भी चाहिए दिल से। हमारे भारत की संस्कृति, धरोहर, विरासत और इसके हर मौसम ऋतु पर गर्व है हमें।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजी ये रचना एक ही रास्ता इस फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी रचना। बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, कहीं सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। उनमें अगर खटास भी भरी हो तो वो यादें भूल पाना नामुमकिन होता है। इसलिए हर बच्चे का बचपन अच्छी सुंदर यादों से सजा रहे, ये कोशिश हमारी रहे। वो कोई भी बच्चे हो, उन्हें अपनापन दीजिए।

शमशाद बेगम लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। नौशाद की संगीत रचना थी, शकील बदायूं ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम दीदार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1951 में। मित्रों, भोर काल का समय बहुत ही सकारात्मक समय भी माना जाता है, जब मन मस्तिष्क में सकारात्मकता अधिक रहती है। और वैसे भी यदि हम अपने मन से आत्म विचार हम करें तो एक आम इंसान क्या और राजा क्या, सभी अपना मन बदल सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं अपने मन को।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता

0: के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4था युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा धर्म है। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति गीत।

यह है विविध भारती झरोका में लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 269 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। आज आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल। समय होगा 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिए, हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात 8:15 से। सुबह व रात्रि 9:30

10 बजे से पिटारा में उजाले उनकी यादों के। फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्म भूषण सई पराजपई से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग आज आप सुनेंगे। ग्यारह बजे से रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का, 2:30 से सदाबहार नगमे।

दिन में 3 बजे से सखियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिएगा। चार बजे से वक्त होगा पिटारा में सेहतनामा का। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6:35 से वक्त होगा संध्या रंजन में भक्ति गीतों का। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष। रात 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल। इसमें आप सुनेंगे हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त, लेखक सुरेंद्र कुमार तिवारी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। 9 बजे से लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे छाया गीत और 10:30 से वक्त होगा ढलती जाए रात का। 'झरोका' में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म

रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्री राम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का भाग 269।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रृंखला वर्षा चौमासा की आज की यह है तीसरी कड़ी। शुभा मुद्गल हमारी जानी पहचानी प्रख्यात गायिका स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार। और आपने मेरी तारीफ तो कर दी, पर मुझे भी ये कहना है कि संगीत सरिता एक बहुत बहुत वर्षों से मैं भी सुनती आई हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने, मेरे लिए विशेष उपलब्धि है कि आज मुझे इसमें प्रस्तुति करने का अवसर दिया जा रहा है।
0: जी तो बात चल रही थी मल्हार की, शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ, और इसके बाद आज आपने कौन सी बंदिश चुनी है, किस राग को चुना है, सब कुछ बताइए।
1: मैंने आज के लिए राग गौड़ मल्हार चुना है।
0: जी
1: बहुत लोकप्रिय मल्हार का प्रकार है, प्राचीन भी है और इसे विभिन्न प्रकारों से गाया जाता है, यानी खूब मतभेद है इसके विषय में।
0: अच्छा अच्छा।
1: के बिलावल थाट का है, खमाज थाट का है, इत्यादि इत्यादि। कोमल गंधार लगा के गाना चाहिए, कैसे गाना है, दोनों निषाद लगने चाहिए कि नहीं, ये सब बहुत अलग अलग चर्चा है। लेकिन मैंने जिन दो बंदिशों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है उनके विषय में एक और बात आपको बताना चाहूंगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं वो हमेशा ही प्राचीन होती हैं, और जैसे ही किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संगीत हो तो वो एकदम 5000 साल से कम का नहीं होता। लेकिन सत्य तो ये है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाले लोग तो आज भी हैं और रचना करने वाले लोग भी
0: आज
1: हैं, प्रस्तुत हैं हमारे बीच में।
0: मतलब वो धारा जो रचना की है वो अविरल है, बहती जा रही है और वो विस्तृत भी होती जा रही है।
1: बिल्कुल। और उसमें अपना अपना योगदान समर्पित रूप से लोग करते जाते हैं।
0: जी।
1: तो ये जो दोनों रचनाएं चुनी हैं, एक मैंने झपताल की रचना चुनी है और एक मैंने तीन ताल की रचना चुनी है,
0: अर्थात ये वर्षा ऋतु से संबंधित ही बंदिशें होंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। गौड़ मल्हार में निबद्ध और वर्षा संबंधी साहित्य की दो रचनाएं हैं, लेकिन दो बहुत ही जाने माने वाग्यकारों की बंदिशें हैं ये। जो पहली जो बंदिश है झपताल में जो मैं गाऊं,
0: गौड़ मल्हार का जो चलन है वो भी अगर आप मतलब आरोह अवरोह और राग के बारे में थोड़ी सी पहचान जो हो।
1: जी तो कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं, वैसे तो मैंने बताया कि अलग अलग तरह से गाया जाता है इसे, लेकिन जो मैं प्रस्तुति कर रही हूँ उसमें ये मुख्य जो इसकी स्वर संगतियां हैं वो इस प्रकार हैं। सारे गामा गामा, ये गौड़ की विशेषता।

0: ये मल्हार का टुकड़ा
1: जी।
0: मा पदानी सादानी पा, यपनी दानी सादानी पा, ये बिलावल का

0: ये गौड़ मल्हार की एक शक्ल ऐसी हाँ। बनती है और ये इन बंदिशों में आपको सुनाई देगी।
1: आप झपताल में जो बंदिश गाने वाली हैं वो पहले
0: जी, जो इसके बोल हैं उनसे अगर आप पूरा स्थाई अंतरा सुने तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाग्यकार हैं उनकी छाप उसमें आपको मिलेगी। उमड़ घुमड़ आए कारे बदरवा, अजहू पिया नहीं आए मंदरवा, रुत बरखा में सब घर आए, आए न प्रेम रंग रंगीले पियरवा।
1: अच्छा, ये इनका तखल्लुस है
0: प्रेम रंग जी। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेम रंग के नाम से कई लोग रचना कर चुके हैं। मुझे मेरे गुरुजी पंडित रामाश्रय झा जी से पता चला कि ये बंदिश जो है ये एक बहुत जाने माने विद्वान वाग्यकार रहे स्वर्गीय पंडित डी टी जोशी
1: जी,
0: उनकी बंदिश है ये
1: जी
0: जो प्रस्तुत
1: जी,
0: कर रही हूँ मैं
1: जी।

0: शुभा जी, आप एक दूसरी भी बंदिश की बात कर रही थी कि गौड़ मल्हार में आप प्रस्तुत करने वाली हैं
1: जी,
0: तो वो रचना भी तो बताइए ना।
1: ये रचना पंडित रामाश्रय झा जी, मेरे गुरु जी, जो राम रंग के नाम से रचना करते हैं, उनकी गौड़ मल्हार की एक रचना है तीन ताल में। और इसमें वो कहते हैं कि घन घेरी आयोरी माँ, गगन गरजत डर पावे, बड़ी बड़ी बूंदन बरसे, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, राम रंग मनुआ लरजे तरसे, घन घेरी आयोरी माँ।
0: जी, और घन जब इस तरह से घेर घेर लेते हैं और कामिनी जो है अगर वो अकेली है तो उसका जियरा जरूर ही धड़केगा और लरजेगा मन, सुनते हैं।

0: श्रोता मित्रों, ये था राग गौड़ मल्हार, और गौड़ मल्हार में शुभा मुद्गल जी से हमने दो बंदिशें सुनी। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी उज्जैन, समय हुआ है सुबह 7 बजे का, और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत इस परम पिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें, जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार हैं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। 9 फिल्मी संगीत का विशेष प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10:00 सुनिए कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। 9:00 का प्रोग्राम महिला सभा आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। 11:00 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम, मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होता है 11:00। 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। 1:00 2:00 सुनिए फिल्म संगीत। 7:00 नगमे पेश किए जाते हैं 2:30 पर। सखियों का अपना प्रोग्राम सखी सहेली सुनिएगा 3:00। 4:00 आप सुनेंगे सेहतनामा। 5:00 से संध्याकालीन सभा में 5:00 सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युववाणी। 6:00 भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 7:00 भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। 7:21 पर अपने उज्जैन केंद्र से लेकर आएंगे आपके लिए माटीरी बात। 8:00 सुनिएगा संसद समीक्षा। 8:15 पर सुनिए सुर्खियों में। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। उर्दू समाचार सुनिए 9:15 पर। 9:30 पर प्रोग्राम होगा पब्लिक स्पीक दिल्ली से, जबकि 10:00 सुनिए संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग। 10:30 पर प्रोग्राम होगा राग रजनी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, नशा मुक्त युवा से ही बनेगा विकसित भारत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। दतिया विधानसभा उपचुनाव की आज मतगणना, नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से किया बाहर। और उज्जैन में आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को देंगे दर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देश भर के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए युवाओं का तन मन से स्वस्थ रहना और नशे से दूर रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस अभियान का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल काशी से शुरू हुआ था और अब ये राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प अगले 100 दिन तक लगातार चलेगा और हर रविवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के बैरट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उपस्थित युवाओं तथा नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अगले दिन वे दक्षिणी ओडिशा के तप्त पानी स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अन्य सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैरसिया में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण शिक्षा के नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री कल बैरसिया में इस विद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 35 एकड़ में बना यह विद्यालय करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनी विद्यालय गरीब और अमीर के बीच शिक्षा की असमानता खत्म करने की दिशा में सरकार का बड़ा प्रयास है। उन्होंने बैरसिया क्षेत्र के विकास के लिए भोपाल बैरसिया मार्ग को 4 लेन बनाने की भी घोषणा की। श्री यादव ने कहा,
2: इस विद्यालय का लोकार्पण ये नए इतिहास का गढ़ना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात। आज देश बदल रहा है, अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां। जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे तक डाकपत्रों से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल लगाई गई हैं और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार राजेंद्र भारती पर चुनावों में भीतरघात करने का आरोप लगा रहे थे। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी दोपहर 3:30 बजे पूजन के बाद 4:00 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद 7:00 बजे तक मंदिर वापस लौटेगी। मंदिर प्रशासन प्रथम कौशिक ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए चलित आरती दर्शन की व्यवस्था की गई है और 15 जगहों पर मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात अच्छी खबर की। खरगोन जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। इससे मिर्च को कानूनी संरक्षण, वैश्विक पहचान और किसानों को बेहतर दाम और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
4: कि जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को GI टैग मिल गया है। वर्षों से अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली निमाड़ी लाल मिर्च अब राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। GI टैग मिलने से खरगोन की लाल मिर्च को कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसानों को बेहतर दाम के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। हमारे साथ

0: देश के पूर्व कृषि मंत्री खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है।
1: एक जिला उत्पाद के तहत मिर्च को ही खरगोन के लिए रखा है, तो इसको जीआई टैग मिलने से और इसको निर्यात के बहुत इसके लिए रास्ते खुलेंगे। पूरे विश्व के अनेक देशों में इसका निर्यात भी होगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा और साथ ही इसके लिए उद्योग भी लगेंगे।
0: इधर उद्यानिकी विभाग के उप संचालक के गिरवाल का भी मानना है,
2: हमारे जिले की मिर्च, लाल मिर्च को एक नई पहचान मिली है। इसकी पहचान बढ़ने से इसका मूल्य जरूर बढ़ेगा और यहाँ पर बाहर से भी खरीदार आएंगे।
0: जीआई टैग खरगोन की लाल मिर्च की पहचान का नया अध्याय है। यह सम्मान न केवल खरगोन की पहचान को नई ऊंचाई देगा बल्कि हजारों किसानों की मेहनत को उसका वास्तविक मूल्य दिलाने की दिशा में भी अहम साबित होगा। मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
3: प्रदेश में विभिन्न जिलों की पुलिस ने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 116 चोरी की मोटरसाइकिलें, 4 ट्रैक्टर, 1 पिकअप और 1 कार जब्त की है। सिंगरौली, गुना, मंदसौर और ग्वालियर सहित कई जिलों में भी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय तेंदुआ शिकार और वन्यजीव तस्करी गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। श्योपुर मुरैना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्लासगो में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। इसके साथ ही 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह में भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया। भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4था स्थान हासिल किया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक औसतन 15.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो तय कोटे की आधी भी नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर सहित 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 15% कम बारिश दर्ज हुई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आपको समाचार संक्षेप में। धार जिले में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिन के 11 बजे रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। खंडवा में हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकसित भारत के लिए युवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिले में कल आयोजित कार्यक्रम में शासकीय विद्यालयों के 300 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। नर्मदापुरम में भिलाड़िया घाट से कांवरिये नर्मदा जल लेकर सिवनी मालवा होते हुए आज तिलक सिंदूर पहुंचेंगे। अशोकनगर में कल श्री शिवटोरिया और ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में 2100 पौधे लगाए गए। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में आज आईटीआई में 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। माय भारत द्वारा संचालित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कल ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर में नशा मुक्त भारत विकसित अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों में शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार उज्जैन, FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

इस पावन मंगलमय और सुहानी सुबह में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और जीवन में कुछ नया सीखने और रचने का अवसर लेकर आती हैं। आज 3 अगस्त है, सावन का पावन महीना, चारों ओर रिमझिर फुहारें, हरियाली की चादर और ऊपर से सोमवार का दिन। बाबा महाकाल के आंगन में आज सुबह से ही एक अद्भुत भक्तिमय माहौल है। जब दिशाओं में शंखनाद हो और हवाओं में हर हर महादेव की गूंज हो तो दिन की शुरुआत अपने आप खास बन जाती है। तो आइए बाबा महाकाल का स्मरण करते हुए और सावन की इस पावन ऊर्जा को अपने भीतर समेटते हुए मिलकर करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत इस बेहद मधुर भक्तिमय गीत के साथ।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। श्रावण मास की पहली बाबा महाकाल की सवारी से पहले उज्जैन नगर निगम ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी पूरी कर ली है। सत्यनारायण मंदिर से छतरी चौक तक लगभग 430 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा नया मार्ग तैयार कर लिया गया है। ये मार्ग सत्यनारायण मंदिर से ढाबा रोड और कमरी मार्ग होते हुए छतरी चौक तक पहुंचता है। लंबे समय से चल रहा ये निर्माण कार्य श्रावण मास की पहली सवारी से ठीक पहले पूरा हुआ है। आज पहली बार बाबा महाकाल की सवारी इस नवनिर्मित मार्ग से होकर गुजरेगी, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही और व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा अधिक सुगम होगी। अब बात दूसरी खबर की। श्रावण मास के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारों में लगना शुरू हो गए थे। भगवान महाकाल की भस्म आरती के लिए रात करीब 2:30 बजे मंदिर के पट खोले गए। परंपरा के अनुसार सबसे पहले सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन किया गया। घंटी बजाकर भगवान से आज्ञा ली गई और इसके बाद सभा मंडप के चांदी के पट खोले गए। वहीं ओमकारेश्वर ममलेश्वर की पारंपरिक सवारी भी आज दोपहर श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाएगी। अगली खबर। श्रावण भादव माह में निकलने वाली भगवान महाकाल की पारंपरिक सवारियों का क्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष श्रावण मास में 4 तथा भादव में 2 यानी कुल 6 सवारियां निकाली जाएंगी। प्रत्येक सवारी के लिए अलग अलग थीम निर्धारित की गई है। पहली सवारी की थीम वैदिक उद्बोधन रखी गई है, जिसके माध्यम से भारतीय वैदिक परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक संदेश को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण खबर। इस वर्ष पहली बार बाबा महाकाल की सवारी वैदिक थीम पर निकलने जा रही है। सवारी मार्ग पर वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक स्वागत, धार्मिक प्रस्तुतियां और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं के स्वागत और सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे ये सवारी श्रद्धा के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत का भी विशेष संदेश देगी। अब बात शहर के विकास से जुड़ी खबर की। उज्जैन के त्रिवेणी विहार क्षेत्र में लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत से ज्ञान और आध्यात्म का एक नया महाकेंद्र आकार ले रहा है। परियोजना का लगभग 10% कार्य 3 माह में पूरा किया जा चुका है। ये केंद्र ज्ञान, आध्यात्म और स्वास्थ्य से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसके पूर्ण होने के बाद उज्जैन को एक नई पहचान मिलने के साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

0: और अब एक प्रेरणादायक खबर। उज्जैन में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने एक नन्हे छात्र से किया अपना वादा निभाकर संवेदनशील पुलिसिंग की मिसाल पेश की। सेंट मेरी स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र सहस्त्रजीत तिवारी से मिलने के लिए एसपी स्वयं उसके घर पहुंचे। एसपी के अचानक घर पहुंचने पर बच्चे और उसके परिवार की खुशी देखते ही बनी। इस आत्मीय मुलाकात के दौरान उन्होंने बच्चे से बातचीत की, उसका उत्साह बढ़ाया और अपने वादों को निभाकर समाज के सामने भरोसे और संवेदनशीलता का सकारात्मक संदेश दिया। इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों में फिलहाल इतना ही।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
0: आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। श्रोताओं, आज 3 अगस्त का दिन हमारी हिंदी भाषा और भारतीय साहित्य के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। आज ही के दिन सन 1886 में आधुनिक हिंदी साहित्य के स्तंभ और राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। गुप्त जी की कालजयी रचनाओं जैसे भारत भारती और साकेत ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वदेशी भावना और सांस्कृतिक चेतना की जो अलग जगाई थी, उसकी चमक आज भी उतनी ही प्रखर है। उनकी पंक्तियां केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। हमें सिखाती हैं कि कला और साहित्य का उद्देश्य समाज को दिशा देना है। ऐसे महान राष्ट्रकवि को शत शत नमन करते हुए आइए सुनते हैं अगला सुंदर और विचारशील गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, सावन के सोमवार का इंतजार सिर्फ उज्जैनवासियों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले शिव भक्तों को भी रहता है। आज सोमवार के इस पावन अवसर पर हमारी अवंतिका नगरी पूरी तरह शिव की भक्ति में लीन है। आज शाम बाबा महाकाल की भव्य सवारी अपनी प्रजा का हाल जाने नगर भ्रमण पर निकलेगी। ढोल नगाड़ों की थाप, डमरुओं की गूंज और भक्तों का अपार उत्साह, ये नज़ारा देखने योग्य होता है। महाकाल लोक की भव्यता और शिप्रा तट की पावनता हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितनी भी हलचल हो, आस्था और भक्ति मन को एक अनूठा सुकून दे सकती है। तो चलिए मन को उसी शांति और सुकून से भरते हुए सुनते हैं आज का अगला मधुर गीत।

श्रोताओं, जहां एक तरफ आज साहित्य और आध्यात्म का संगम है, वहीं दूसरी तरफ आज का दिन खेल जगत के लिए भी बहुत खास है। आज भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और खेल जगत के चमकते सितारे सुनील छेत्री का जन्मदिन है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल सुनील छेत्री ने भारत में फुटबॉल को एक नया मुकाम दिया है। मैदान पर उनका समर्पण, अनुशासन, मैदान के बाहर उनकी विनम्रता और देश की जर्सी के लिए उनका अटूट समर्पण, ये सब हमारे देश के युवाओं को अपने अपने लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश देता है। आइए खेल के इस जज्बे और ऊर्जा को सलाम करते हुए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत।

दोस्तों, देश को आगे बढ़ाने में साहित्य और खेल जगत जितनी अहम भूमिका निभाते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में हमारी अपनी भी बनती है। सावन के इस पावन महीने में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हमारी इस पवित्र नगरी उज्जैन पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक मेजबान के तौर पर हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा, सुंदर और अनुशासित रखें। गीला और सूखा कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने से बचें और सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करें। जब हमारे शहर का हर नागरिक जागरूक होगा, तभी हमारा उज्जैन पूरे देश के सामने स्वच्छता और आतिथ्य का एक नया उदाहरण पेश करेगा। साथियों, समय की सुइयां रुकती नहीं है और बातों ही बातों में आज का सुप्रभात उज्जैन अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज हमने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की ओजस्वी लेखनी को नमन किया, सुनील छेत्री के खेल कौशल से प्रेरणा ली और सावन के सोमवार पर महाकाल नगरी की पावन ऊर्जा को महसूस किया। आइए इस नए हफ्ते की शुरुआत में एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन लाएंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और अपनों की मदद करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सुनते हैं आज का अंतिम और मधुर गीत।

साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है कि आज की ये प्रस्तुति आपकी सुबह को नई ऊर्जा और उमंग से भरपाई होगी। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हेमानी आपसे विदा लेती हूँ। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में, सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000-7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
4: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka yuva tan se swasth ho, man se swasth ho, aatmavishwas se bharpur ho aur ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है.
3: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
4: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स.
3: Counting of votes are underway for the by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Postal ballots has been counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all three states. In Madhya Pradesh, counting for the Datia Assembly seat has been held at the Government Polytechnic College, where 20 counting tables have been set up. The meeting of heads of the National Statistical Offices, NSO, of BRICS countries Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, UAE, will be held under the chairship of India from today in Lucknow. Our correspondent has the details.
5: India's BRICS chairship is guided by the overarching theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Within the BRICS statistics track, India has adopted the theme Quality Statistics as Driver of Change, reflecting an unwavering commitment to data quality, innovation, effective dissemination and people-centric statistical systems. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data dissemination and accessibility, strengthening microeconomic and sectoral statistics. The objective is to further strengthen cooperation in the areas of dissemination of statistics, innovation in statistical systems and the exchange of knowledge and best practices. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
3: President Draupadi Murmu will arrive in Odisha today on a three-day visit. During her stay, she will inaugurate Jagatguru Kripalu University in Cuttack and participate in a series of official educational and cultural programs in Bhubaneswar, Cuttack and Ganjam districts. We have a report from a correspondent.
6: President Draupadi Murmu will arrive in Bhubaneswar this afternoon on a three-day visit to her home state of Odisha. Later in the evening, she will inaugurate Jagat Guru Kripalu University at Bhara near Cuttack. Tomorrow, the President will travel by a special train from Bhubaneswar to Berhampur and later proceed by road to Taptapani in Ganjam district, where she is scheduled to offer prayers at Ma Kandhuni Devi Temple and the Shiva Temple. She will halt for the night at the Army Air Defense College at Golabandha. Elaborate security arrangements have been made with her 40 platoons of police deployed in Bhubaneswar and Cuttack. No fly zones have been declared over Berhampur railway station, the president's travel route, Taptapani temple complex, the Army Air Defense College and other designated venues to ensure foolproof security during the presidential visit. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
3: Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Finance Minister Nirmala Sitharaman is likely to introduce the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to take up the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 today. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. US President Donald Trump has said the negotiations with Iran, expected to take place through intermediaries, are scheduled to take place today. Speaking to reporters, Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz, while asserting that an accord would be established concerning the denuclearization of Iran. In Pakistan, at least 14 people, including five security men, were killed and over a dozen injured in a suicide attack on a police station during a peace rally in Khyber Pakhtunkhwa province yesterday. The explosion occurred when the Swat peace rally was in progress right across the police station in Kabal town in Swat district. No group or individual has claimed immediate responsibility for the attack. Today is the first Monday for the holy month of Savan, as it brings a special gift for devotees. In Ujjain, the city of Mahakal is decked up today, waiting for the palanquin. We have a report.

0: and academic autonomy are the basic minimum if higher education institutions are to be hubs of innovation and knowledge creation. Referring to the Jagannath Yatra, the Asian Age rides world's biggest annual crowd management masterclass. Commonwealth Games medalists receive heroes' welcome is another story in the Asian Age. The Tribune notes Punjab's Tanvi, youngest Taipei Open champ. And finally, on an Agatha Christie masterpiece, The Murder of Roger Ackroyd, written 100 years ago, which was arguably her most popular novel. Hindustan Times writes, mystery, mastery and tumultuous twist, Roger Ackroyd at 100. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार उज्जैन नगरी के आप सभी प्यारे श्रोताओं को मेरी यानी आरजे हिमानी की तरफ से गुड मॉर्निंग और ढेर सारा प्यार। आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के बज चुके हैं ठीक 8:30 और वक्त हो गया है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम उज्जैनी आरजे का। दोस्तों 3 अगस्त यानी अगस्त के इस पहले सोमवार की ताज़ा तरीन सुबह में सुरों और गपशप का कारवां पूरी तरह सज चुका है। अगर आज सुबह अलार्म बजने पर आपका मन भी यही कह रहा था कि काश आज भी संडे होता तो घबराइए मत, आज हमारे पास आपकी मंडे मॉर्निंग को एकदम फ्रेश बनाने का पूरा इंतजाम है। इतिहास की रोमांचक कहानियों से लेकर तरबूज यानी वाटरमेलन की मजाकिया वाइब्स तक बहुत कुछ है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वेलकम बैक दोस्तों, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं जैनी आरजे हिमानी के साथ। सच सच बताइएगा, आज सुबह जब अलार्म बजा तो किस किस ने उसे 5 मिनट के लिए स्नूज किया। मंडे सुबह बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन जैसे ही हाथ में गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी का कप आता है, दिमाग की बत्ती अपने आप जल जाती है। मंडे ब्लूज़ कुछ नहीं, बस एक माइंडसेट है। अगर आप सोच लें कि ये हफ्ता आपके लिए नए मौके और नई खुशियां लेकर आने वाला है, तो आपका सोमवार भी संडे से कम मज़ेदार नहीं लगेगा। तो उठिए, मुस्कुराइए और इस नए हफ्ते का स्वागत जोरदार अंदाज में कीजिए। चलिए सुनते हैं ये सुपर हिट और एनर्जेटिक गाना।

क्या बात है। चकदे सुनकर तो मंडे का सारा आलस चुटकियों में गायब हो गया। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इतने गंभीर हो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही भूल जाते हैं। कभी मंडे मॉर्निंग की हल्की धूप का मजा लेना, तो कभी रेडियो पर अपना मनपसंद गाना सुनकर गुनगुना लेना। यही तो वो छोटे छोटे लम्हे हैं जो हमारी जिंदगी को हसीन बनाते हैं। अपने भीतर के उस मासूम बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए जो हर दिन में कुछ नया और खूबसूरत ढूंढ लेता है। इसी मासूमियत के नाम आइए सुनते हैं आज का अगला बेहद सुरीला और रोमांटिक गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर उज्जैनी आरजे। दोस्तों, आज 3 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़े साहस के रूप में दर्ज है। आज ही के दिन सन 1492 में महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से अपनी ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की थी। बिना ये जाने कि समंदर के उस पार क्या है, उन्होंने अपने जहाज अज्ञात लहरों में उतार दिए थे। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि जब तक आप किनारे का मुंह छोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप नए समंदर और नई मंजिलों की खोज नहीं कर सकते। तो इस मंडे अपने डर को किनारे कीजिए और अपने सपनों की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। चलिए सुनते हैं जबरदस्त गाना।

दोस्तों, कोलंबस की कहानी हो या हमारे अपने जीवन की बात, एक बात हमेशा सच रहती है कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक छोटे से सपने और पक्के इरादे से होती है। जब आप कुछ नया करने निकलते हैं तो लोग रोकेंगे, सवाल उठाएंगे और थोड़ा सा डर भी लगेगा, लेकिन अगर आपको अपनी मेहनत और हुनर पर भरोसा है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अपनी क्षमता पर कभी शक मत कीजिए। आइए इस उम्मीद और नई शुरुआत के साथ सुनते हैं अगला गाना।

दोस्तों, हम अक्सर मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। मंडे की सुहानी सुबह, हल्की हल्की हवाएं, चाय की चुस्कियां और रेडियो पर आपकी पसंद के गाने, इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। अपने आज में जीना सीखिए, क्योंकि जो पल बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता में आज की खुशी क्यों गंवानी। तो मुस्कुराइए, इस पल का आनंद लीजिए। आइए अब सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

FM 102.5 MHz पर काम की बातों के बाद अब थोड़ा मूड को हल्का फुल्का चटपटा और मज़ेदार बनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज 3 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ट्रेंडिंग और फन डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, आज है नेशनल वाटरमेलन डे, यानी हमारा प्यारा और रसीला तरबूज दिवस। लाल लाल मीठा और ठंडी ठंडी ताजगी देने वाला तरबूज भला किसे पसंद नहीं होता। तो चलिए फिर इसी बात पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। दोस्तों, वैसे तरबूज खाते वक्त सबसे बड़ा टास्क क्या होता है पता है? उसके वो छोटे छोटे बीज निकालना। बचपन में तो हम में से कई लोग इस बात से डर जाते थे कि कहीं बीज निकलने से पेट में तरबूज का पेड़ ना उग जाए। क्यों, आपके साथ भी बचपन में ऐसा मजाक हुआ है ना? खैर, मजाक से हटकर देखें तो वाटरमेलन में 92% पानी होता है, जो आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए जबरदस्त है। तो चलिए इसी ताजगी के साथ सुनते हैं ये अगला सुरीला गाना।

FM 102.5 MHz पर गानों का ये कारवा लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चाहे इतिहास बनाने की बात हो, अपने करियर में आगे बढ़ने की बात हो, या फिर अपनी किसी छिपी हुई हॉबी को पूरा करने की, जब आप अपने अंदर की झिझक को तोड़ते हैं, तभी आपकी असली उड़ान शुरू होती है। कभी भी खुद को कम मत आंकिए। अपने अंदर वो ताकत है जो आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती है। इसी पॉजिटिव सोच और जज्बे को सलाम करता ये जबरदस्त गाना सुनिए।

आकाशवाणी उज्जैन पर आप जुड़े हुए हैं आपके पसंदीदा शो उज्जैनी आरजे में। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी पुरानी सोच, डर या दूसरों की बातों में बंध कर मत रहिए। अपने दिल और दिमाग के दरवाजे हमेशा नए विचारों, नए सीख और नई संभावनाओं के लिए खुले रखिए। जब सोच मुफ्त और खुली होगी, तभी जीवन में असली प्रगति और खुशियाँ आएंगी। आइए सुनते हैं सपनों और इरादों को नई ऊंचाई देने वाला ये बहुत प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज के इस एक घंटे में हमने मंडे ब्लूज को भगाकर मंडे मोटिवेशन अपनाया, इतिहास के पन्नों से नई राहें खोजने की प्रेरणा ली और वाटरमेलन डे की मीठी मीठी बातें की। जीवन का हर दिन एक नया मौका है, इसे पूरी शिद्दत, हंसी और पॉजिटिविटी के साथ जिए। आइए सुनते हैं हमारी आज की प्लेलिस्ट का ये आखिरी और बेहद खूबसूरत सुकून देने वाला गाना।

दोस्तों, गानों की मस्ती, ढेर सारी गपशप और काम की बातों के साथ ये एक घंटा कब पलक झपकते ही बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है कि आज का जैनी आरजे आपके मंडे को एकदम फ्रेश और पॉजिटिव स्टार्ट दे पाया होगा। खुद भी मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। अब आपकी दोस्त आरजे हिमानी को आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz पर। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा स्टेशन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे हिमानी और आप ट्यून इन कर चुके हैं आपका और हमारा पसंदीदा बॉलीवुड बीट्स। आज 3 अगस्त है। अगस्त के इस पहले सोमवार की ताज़ा और खूबसूरत सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी मंडे मॉर्निंग एक प्यारी सी स्माइल, गर्मा गर्म चाय और ढेरों पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू हुई होगी। जितने भी लोग इस वक्त अपने काम, कॉलेज या किसी ज़रूरी काम के लिए निकल रहे हैं, उन सभी का दिन सुपर हिट रहे। अगले आधे घंटे तक हम बॉलीवुड के ऐसे गानों के सफ़र पर चलेंगे जो आपके मंडे के मूड को एकदम सेट कर देगा, तो बस वॉल्यूम बढ़ाइए और इंजॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं फिल्म सिम्बा के इस खूबसूरत गाने के साथ।

दोस्तों चलिए बॉलीवुड बीट्स के सुरीले सफर को थोड़ा सा और खूबसूरत और मेलोडियस बनाते हैं। अब प्लेलिस्ट में लेकर आते हैं रिश्तों की मिठास और अपनों के साथ वह एहसास जो दिल को सीधा छू जाए। अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की फिल्म पैडमैन से अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज में सुनिए ये बेहद प्यारा गाना।

0: लड़की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: दोस्तों, इस सुहाने मंडे का मिजाज थोड़ा सा सुकून भरा और एवरग्रीन बनाते हैं। फिल्म जहर का ये ऑल टाइम फेवरेट और क्लासिक ट्रैक आज भी जब कानों में पड़ता है तो दिल पुरानी यादों में खो जाता है। सुनिए बेहद इमोशनल और सुरीला गाना।

FM 102.5 MHz पर गानों का कारवां लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। अब बारी है हमारी प्लेलिस्ट में थोड़ी सी मिठास, मस्ती और खिलखिलाती हुई ऊर्जा जोड़ने की। फिल्म अग्निपथ का यह ट्रैक आपको हर छोटी छोटी बात में खुशियां ढूंढना सिखाता है। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की जादुई आवाज में सुनिए ये मस्त और तरोताजा कर देने वाला गाना।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल न करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई, दर देख के चल।

दोस्तों अब वक्त है एक ऐसी मेलोडियस धुन का जो मन में एक अलग ही सुकून भर देती है। फिल्म यारियां 2 का ये गीत रिश्तों के नाजुक एहसास और मोहब्बत की गहराई को बयां करता है। सुनिए ये बेहद खूबसूरत और मेलोडियस गाना।

क्या भव्य और सुरीला समापन था। आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आधा घंटा आपके साथ बीट्स और गानों की मस्ती में कब बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है इन बेहतरीन गीतों ने आपके इस मंडे को एक जबरदस्त और पॉजिटिव ऊर्जा से भर दिया होगा। अब अपनी दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और कल सुबह फिर मिलेंगे कुछ और धमाकेदार गानों के साथ, सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड बीट्स में। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 पर, और आप हमें न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से भी सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सभी प्रिय श्रोताओं का हृदय से स्वागत करती हूँ हमारे विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में। श्रोताओं, बाबा महाकाल की पावन नगरी अवंतिका अपने प्राचीन मंदिरों, गौरवशाली इतिहास और अनूठी परंपराओं के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। आज के इस विशेष अंक में हम आपको उज्जैन के एक अत्यंत भव्य, ऐतिहासिक और आस्था के प्रमुख केंद्र श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे इस मंदिर के निर्माण का समृद्ध इतिहास, इसकी अद्भुत स्थापत्य कला और बाबा महाकाल की पावन सवारी के दौरान यहाँ होने वाले हरिहर मिलन के पावन प्रसंग के बारे में। तो आइए इस भक्तिमय और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस अति मधुर गीत के साथ।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

राजा दौलतराव सिंधिया की धर्मपरायण महारानी बाईजाबाई शिंदे ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में काले संगमरमर से निर्मित भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी की अति मनमोहक और अलौकिक प्रतिमा विराजमान है। मंदिर का विशाल प्रांगण, नक्काशीदार खंभे और चांदी जड़े द्वार इसकी भव्यता को और भी भव्य दिखाते हैं। आइए भगवान गोपाल जी के चरणों में अपना शीश नवाते हुए सुनते हैं ये सुंदर भक्ति गीत।

राजा दौलतराव सिंधिया की धर्मपरायण महारानी बाईजाबाई शिंदे ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में काले संगमरमर से निर्मित भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी की अति मनमोहक और अलौकिक प्रतिमा विराजमान है। मंदिर का विशाल प्रांगण, नक्काशीदार खंभे और चांदी जड़े द्वार इसकी भव्यता को और भी भव्य दिखाते हैं। आइए भगवान गोपाल जी के चरणों में अपना शीश नवाते हुए सुनते हैं ये सुंदर भक्ति गीत।

102.5 मेगाहर्ट्ज पर उज्जैन दर्शन का ये विशेष अंक जारी है। श्रोताओं, गोपाल मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी निर्माण शैली है। मराठा और मुगल स्थापत्य कला का ये सुंदर मिश्रण देखने योग्य है। मंदिर के शिखर पर फहराती ध्वजा और इसकी विशाल सीढ़ियाँ श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक असीम मानसिक शांति का अनुभव होता है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली आरती में शामिल होने के लिए उज्जैन शहर ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। आइए द्वारकाधीश जी के इसी पावन दरबार को नमन करते हुए सुनते हैं अगला मधुर भक्ति गीत।

श्रोताओं, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर का धार्मिक महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब बाबा महाकाल की पावन सवारी नगर भ्रमण पर निकलती है। महाकाल की सवारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य पड़ाव गोपाल मंदिर होता है। जब बाबा की पालकी यहाँ पहुँचती है तो सिंधिया स्टेट और गोपाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सवारी का भव्य स्वागत किया जाता है। यहाँ पूजकों द्वारा बाबा महाकाल की पालकी में विराजित चंद्रमौलेश्वर स्वरूप और मंदिर के द्वारकाधीश गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन सम्पन्न करवाया जाता है। ये पल संपूर्ण उज्जैन वासियों के लिए अत्यंत गौरवशाली और भक्तिमय होता है। आइए सुनते हैं ये सुरीला गीत।

श्रोताओं, गोपाल मंदिर में सवारी के दौरान होने वाला पूजन वास्तव में हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव के अभेद्य प्रेम का प्रतीक है। हमारे उज्जैन की अनूठी परंपरा हमें सिखाती है कि शिव और केशव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही परम सत्ता के रूप हैं। जब बाबा महाकाल गोपाल मंदिर के प्रांगण में विश्राम करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बैकुंठनाथ और कैलाशपति एक दूसरे से आत्मीय मिलन कर रहे हों। इस अलौकिक क्षण के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु गोपाल मंदिर परिसर में एकत्रित होते हैं और पूरा वातावरण जय श्री महाकाल और जय श्री कृष्णा के जयकारों से गूंज उठता है। आइए इस अनुपम परंपरा को नमन करते हुए सुनते हैं अगला गीत।

सचमुच द्वारकाधीश गोपाल मंदिर न केवल हमारी आस्था का केंद्र है, बल्कि ये उज्जैन के ऐतिहासिक वैभव और सांस्कृतिक सद्भाव का जीवंत प्रतीक भी है। आज के संक में हमने गोपाल मंदिर के निर्माण, इसकी वास्तुकला और महाकाल सवारी के दौरान यहाँ होने वाले पावन पूजन के

महत्व को करीब से जाना। भगवान द्वारकाधीश और बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आशा है कि आज की उज्जैन दर्शन की यात्रा आपको बेहद पसंद आई होगी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आइए सुनते हैं आज का ये समापन भक्ति गीत।

भगवान द्वारकाधीश और बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित इन मधुर भजनों के साथ उज्जैन दर्शन का आज का ये विशेष अंक यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है कि उज्जैन के इस ऐतिहासिक मंदिर की यात्रा ने आपकी सुबह को भक्ति ज्ञान

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz पर प्रस्तुत है सखियों का खास कार्यक्रम महिला सभा।

हरी चूड़ियां, महकती मेहंदी और मन में भोलेनाथ का अटूट विश्वास। सावन का ये पावन मौसम हर मन को भक्ति, विश्वास और नई उमंग से भर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी चंदना जैन और स्वागत करती हूं आपका आकाशवाणी उज्जैन से कार्यक्रम महिला सभा में। सखियों, आज सावन का पहला सोमवार है। यह दिन महिलाओं और कन्याओं के लिए विशेष आस्था का प्रतीक माना जाता है। कोई परिवार की सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं, तो कोई अच्छे जीवन साथी की मनोकामना के लिए। लेकिन इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है धैर्य, संयम, विश्वास और सकारात्मक सोच। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी अटूट श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। तभी से सावन का सोमवार का व्रत श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। और सखियों, जब बात बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की हो तो सावन का उल्लास और भी बढ़ जाता है। शिव शक्ति से सराबोर वातावरण, मंदिर में गूंजती घंटियों की ध्वनियां और हर हर महादेव के जय घोष को मन में एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की पावन सवारी का श्रद्धालु पूरे साल इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यदि आप दर्शन के लिए जाएं, तो बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए सुरक्षित दर्शन करें। सखियों, इसी श्रद्धा, ममता और परिवार की खुशहाली की भावना के साथ आज के महिला सभा में हम मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण विषय पर विशेष वार्ता सुनेंगे। स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष में सुनिए डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा की कार्यक्रम संयोजक अनामिका चक्रवर्ती की विशेष वार्ता। साथ ही राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती पर उनके साहित्य में नारी के सम्मान और गौरवपूर्ण स्थान को भी याद करेंगे। फिलहाल सावन की इस मनभावन बेला में आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना।

0: सखियों, इन दिनों पूरे देश में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष में प्रस्तुत है कार्यक्रम संयोजक अनामिका चक्रवर्ती की डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा के से विशेष बातचीत। आइए सुनते हैं ये विशेष वार्ता।
1: नमस्कार। विश्व स्तनपान सप्ताह एक ऐसा अवसर है जब हम माँ के दूध की श्रेष्ठता को सारी दुनिया के सामने, समाज के सामने स्थापित करना चाहते हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतिंदर कौर सलूजा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि भारतवर्ष में तो ऐसी कोई महिला होगी जो स्तनपान ना कराए, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं। पर विदेशों में तो मैंने ये जब वहां पर मैं 10 साल रही तो मैंने देखा
1: जी।
2: और मुझे बहुत अजीब लगा कि वो महिलाएं बॉटल मिल्क देती थी, बॉटल मिल्क आते थे और वार्ड्स में सब जगह रख दिए जाते थे और माताएं वो दूध पिलाती थी बच्चों को। तो मुझे भी वो देख के बड़ा अजीब लगा। तो ये 91-92 में पूरे विश्व में और स्पेशली WHO यूनिसेफ वगैरह ने डिसाइड किया कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को, स्तनपान को प्रमोट करना चाहिए महिलाओं में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं स्तनपान कराएं, और इसलिए स्तनपान वीक की स्थापना हुई
1: जी। और एक ये बहुत बड़ा सम्मान है उस माँ को जिसके लिए एक बच्चा उसकी सबसे अमूल्य निधि होता है और जिसको वो अपना सब कुछ देना चाहती है, तो क्यों ना माँ के दूध से ही शुरुआत करें। तो ऐसा क्या उसमें होता है जो विश्व की संस्थाएं हैं स्वास्थ्य के जो जागरूक कर रही है?
2: देखिये, माँ का दूध न केवल पौष्टिक होता है, उसमें सब तरह के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बच्चों को वो उसके अंदर होते हैं। तो वो उसके अलावा जो इम्यूनिटी है या प्रतिरोधक क्षमता जो बोलते हैं बच्चे में, वो माँ के दूध से आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो शुरू का दूध होता है, कोलेस्ट्रॉल जो पीला होता है, कई मिथक है वो दूध नहीं पिलाते, निकाल के साफ कर देते हैं, पर वो गलत है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसमें बहुत इम्यूनिटी होती है, और वो इम्यूनिटी जो होती है बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से, स्पेशली निमोनिया है या जो शुरू में बचपन में जो बीमारियां होती है उससे बचाती है। इसीलिए उसको अमृत कहा जाता है, क्योंकि वो आपको बचाता है दूसरी बीमारियों से
1: जी। ना सिर्फ पौष्टिक होता है बल्कि बीमारियों के लिए टीका भी होता है।
2: बिल्कुल।
1: और उसे कह सकते हैं कि पहला टीका है वो माँ का दूध।
2: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए स्तनपान को या माँ के दूध को इतना महत्व दिया जाता है। माँ अपने बच्चे को कब से दूध पिला सकती है?
2: स्तनपान बिल्कुल इमिडिएटली, जैसे ही डिलीवरी होती है
1: जी,
2: वैसे ही अगर माँ बच्चे को माँ के स्तन से लगाया जाए तो जो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि जो माताएं बड़ी एंजाइटी में होती हैं, पेन में होती हैं, जब प्रसव हो रहा होता है, जब दर्द हो रहा होता है, जैसे उनको बच्चा उनकी छाती से लगता है वो एकदम काम हो जाती है और दर्द भूल जाती है, स्मेल करने लगती है, न केवल पीड़ा भूलती है पर वो जो उनकी भावनात्मक जोड़ वो उस समय दिखता है इसके अंदर।
1: और ये भी कहा जाता है कि न सिर्फ ये बच्चे के लिए अमृत का कार्य करता है बल्कि माँ के लिए भी एक तरह की टॉनिक होता है, जैसा आप बता रही हैं कि वो अपने दर्द भूल जाती हैं या फिर उनको जो एक फीलिंग आती है, एक गर्व सा महसूस होता है कि ये मेरी सृष्टि है, ये मैंने इसे जन्म दिया है, मुझे इसको पालना है, मुझे इसको बड़ा करना है।
2: बिल्कुल, बच्चे को गोद में लेके जो उनकी भावना है वो सही में, कहीं रोने लगती है, कहीं उनको देख के स्माइल, कहीं मतलब बहुत अजीब सी भावनाएं होती है जो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के।
1: मैम, आजकल एक और कॉन्सेप्ट है कंगारू केयर कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे?
2: ये कंगारू केयर जो है ना, वो एक वो है कि प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं तो उनको NICU में रख देते हैं
1: जी।
2: वो भी वैसे तो हीटेड वो रहते हैं जिसके अंदर बच्चों को रखा जाता है और उनका टेम्परेचर वो सब मेंटेन किया जाता है, पर कैंगरू में माँ के साथ उसको बच्चे को बांध दिया जाता है, तो मदर की जो हीट है
1: जी,
2: मदर के थ्रू जो हीट है वो बच्चे को सेफ रखती है।
1: अच्छा।
2: और भावनात्मक जोड़ भी बनता है
1: जी,
2: कि वो बच्चा माँ के साथ लगा रहता है,
1: उससे सुरक्षा का एहसास भी होता है।
2: तो ये एक नया ट्रेंड है कि बच्चे को NICU में अलग इंक्यूबेटर में रखने की जगह माँ के साथ रखा जाए
1: जी। और चूंकि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपने वो दौर भी देखा होगा जब बच्चे को शुरुआत में घर की दादी नानी या घर के बड़े बुजुर्ग पहले उसको गुट्टी के रूप में शहद या कुछ इस तरह की चीजें देते थे और माँ के दूध से उसको वंचित रखा जाता था। फिर धीरे धीरे जब लोगों में अवेयरनेस आई, जागरूकता आई, आप लोगों के द्वारा भी और जो भी संचार माध्यम है वो भी बताते रहते हैं कि माँ का दूध ही सबसे पहली बार पिलाना चाहिए, तो कई महिलाएं कहती है कि उनको पूरी तरह से दूध नहीं बनता है, इसलिए वो फिर ऊपर का दूध पिलाने की बात हो जाती है, या फिर कई बार बच्चा बहुत ही कमजोर होता है, तो क्या इसके लिए भी माँ का दूध पर्याप्त रहता है?
2: नहीं, कमजोर बच्चे के लिए माँ का दूध पर्याप्त रहता है, उसमें कोई, ये नेचर है एक्चुअली, बच्चा जितना सक करता है माँ का उतना ही दूध प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, साइंटिफिक है कि जितना बच्चा सक करता है उतना दूध प्रोड्यूस होता है। तो शुरू शुरू में 5-7 दिन जरूर ये होता है कि दूध थोड़ा एक्सेस मात्रा में आता है, पर बाद में जितना दूध सक होता है उतना दूध आता रहता है। हर 3 घंटे में माँ को लगेगा उसका दूध ब्रेस्ट हैवी हो रहा है, दूध भर रहा है, और वो बच्चे को पिलाना शुरू कर देती है। तो कमजोर बच्चों के लिए तो दूध बहुत जरूरी है कि माँ का दूध ही मिले उसको।
1: बहुत अच्छा। और पानी वगैरह भी कुछ नहीं दिया जाता है 6 महीने?
2: पानी इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो एक तो कॉन्टामिनेटेड होता है और उसमें कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया जरूर होते हैं जिससे आगे चल के प्रॉब्लम आ जाती है लिवर में, इसलिए पानी नहीं दिया जाता।
1: कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं माओं को भी जो प्रसव के पूर्व भी आती हैं और प्रसव के पश्चात भी आती हैं, तो जो ऐसी माएं हैं जो हमें सुन रही हैं या जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि सामान्य परेशानियां क्या होती हैं, क्योंकि हर महिला की अपनी इंडिविजुअल परेशानी होती है, व्यक्तिगत उसे कुछ हो सकती है स्वास्थ्य समस्या, लेकिन एक जो कॉमन आप अपने इतने लंबे एक्सपीरियंस से आप लोग देखते हैं, तो क्या ऐसी समस्याएं आती हैं शुरुआत में जिन पर हमें ध्यान देना है?
2: सबसे पहले जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें गर्भवती महिलाओं को उल्टियां बहुत होने लगती हैं। बहुत सारी महिलाएं उल्टियों से परेशान हो जाती हैं और खाना नहीं खा पाती हैं। तो मेरा उनको यही सजेशन होता है कि अगर बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं तो मेडिसिन्स लें, अदरवाइज जैसे अगर रोटी नहीं पसंद तो दलिया ले लें, दाल चावल ले लें, कुछ इस तरह का ग्रेन ले लें जिससे कि उसको जो उसको डाइजेस्ट हो जाए
1: जी।
2: तो पहले 3 महीने उल्टियों की संभावना जो प्रॉब्लम है वो महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है
1: जी।
2: सेकेंड थर्ड में एपेटाइट अच्छा हो जाता है, महिलाएं खाना भी अच्छी तरह से खाने लगती हैं, पर जैसे महिलाओं को जो आहार लेना चाहिए उसके लिए वो बहुत उनके परेशानी होती है, दूध नहीं पियेंगी कि हमको नहीं भाता है, या ये मिथ होता है कि दूध पीने से बच्चे का साइज बड़ा हो जाएगा तो घर वाले दूध नहीं देते हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सभी चीजें हो, ताकि जो माँ स्वस्थ रहेगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा
1: जी।
2: तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर की सलाह पे, अगर हीमोग्लोबिन में कम है तो डॉक्टर्स यूजुअली आयरन प्रिस्क्राइब करते हैं, कैल्शियम देते हैं, वो सब चीजें नियमित रूप से देनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, कई बार सुनने को भी मिलता है कि जो महिलाओं को आयरन की गोलियां दी जाती हैं वो फेंक देते हैं।
2: हस्बैंड्स को उनको यही बोलती हूँ कि आपने खरीद के दे दी पर अगर आपको क्या मालूम उसने खाई, क्योंकि हम 3 महीने बाद फिर हीमोग्लोबिन चेक करते हैं तो वो और कम हो चुका होता है। तो क्योंकि माँ के खून से ही बच्चे का खून बनता है, तो अगर माँ के उसमें आयरन कम है और ऊपर से नहीं लेती है तो उसका हीमोग्लोबिन और लो हो जाता है
1: जी।
2: तो ये महिलाओं को समझना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं तो हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो जो पौष्टिक आहार है, आयरन, कैल्शियम जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके अलावा जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दही, दूध, ये चीज नियमित रूप से ले, अंकुरित दालें ले जिससे प्रोटीन चला जाए। तो ये चीजें जो रहती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, और अगर फेंकती हैं तो वो अपना और अपने बच्चे का नुकसान करती हैं।
1: देखिए कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि जो दवाइयां या जो सप्लीमेंट की आवश्यकता है वो जरूर लेना है, और ये ना सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि परिवार के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पति हो, सास ससुर हो या माता पिता हो, अगर वो पूरा ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जो सुलझ नहीं सकती है। और अगर कोई व्यक्तिगत किसी को परेशानी है तो वो उस विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है प्रसव के पश्चात, इसमें एक बहुत बड़ी बात आजकल देखने को आ रही है, जैसा आपने शुरुआत में भी बताया था हमारी चर्चा के कि एंजाइटी रहती है, एक तरह की कभी कभी निराशा सी हो जाती है। और आजकल जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनको एक तरह का अवसाद हो जाता है कि पता नहीं हम अपनी नौकरी कर पाएंगे कि नहीं, या हम जो काम कर रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
2: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, जो आप कर रहे हैं अवसाद, इसको हम लोग पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। थोड़ा तो ये हार्मोनल से रिलेटेड होता है, जो हार्मोन होते हैं बॉडी के वो एकदम से कम हो जाते हैं, तो जो महिलाएं सशक्त नहीं है वो इस डिप्रेशन में आ जाती है। और कई उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने कहा जॉब पे जा सकेंगे नहीं, और कई बार जैसे रात रात भर जगना पड़ता है बच्चे के लिए, हर दो तीन घंटे में उठना पड़ता है, तो महिलाएं ये समझ नहीं पाती कि ये, क्योंकि उनकी आदत नहीं है, तो वो उस चीज से भी बहुत परेशान हो जाती है। तो इसमें जो परिवार है उसका, उनको मॉरल सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है, पति है, सास है, ससुर है या माता पिता, वो जरा उसको समझाएं कि ये नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है, ये चीजें जो है अपने को उससे दृढ़ता से वो करना, सामना करना, रादर देन अवसाद
1: जी। धीरे धीरे वो समस्याएं भी
2: धीरे धीरे समस्या हो जाती है, क्योंकि मेरे पास भी वो आती है कि रात में सोने नहीं देते, वो नहीं देते, मैं कहती हूँ धीरे धीरे आपको खुद को आदत पड़ जाती है कि बच्चा सोता है आप सो जाते हो, बच्चा उठता है उठ जाते हो, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े आपको उसके लिए पेशेंस रखनी चाहिए।
1: जी जी, बहुत ही अच्छी बात बता रही है कि ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है धात्री माँ को, या जो महिलाएं प्रसव के पश्चात जो अपने आप को इस तरह की स्थितियों से जो जूझ रही हैं, जो सामना कर रही हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों से बातचीत करें, अच्छा कुछ देखें, तो हो सकता है धीरे धीरे उनके अंदर ये बातें भी दूर होती जाएं। मैडम, आजकल बहुत देखने को आ रहा है महिलाएं या तो डिब्बा बंद दूध का उपयोग करती है, या वो गाय का दूध वो पिलाने लगती है बच्चे को 6 महीने के अंदर अंदर भी, तो इसकी क्या सलाह है?
2: पहले 6 महीने पूरी कोशिश होनी चाहिए कि माँ का दूध हो, पर अगर माँ का दूध किसी वजह से कम है या किसी बीमारी की वजह से माँ नहीं पिला पा रही है, वो बच्चे के लिवर पे असर कर सकता है, उसके डाइजेशन पे असर कर सकता है, बच्चे को डायरिया बहुत जल्दी जल्दी होता है उससे, और भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जो गाय का दूध होता है उसमें कई बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते
1: जी, जी।
2: तो पहले 6 महीने माँ का दूध।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि माँ के दूध में हर वो तत्व होता है जो बच्चे की आवश्यकता होती है, या शायद प्रकृति ने ये वरदान दिया है माँ और बच्चे दोनों को। और कुछ ऐसी सलाह जो आप हमारे जो माँ बनने वाली युवतियां हैं उनको देना चाहेंगी?
2: तो माँ बनना एक बहुत बड़ा वरदान है, तो उसे खुशी से आत्मसात, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ महिलाएं पूरे 9 महीने ये हो रहा है वो हो रहा है, अपने बॉडी में जब एक बच्चा पलता है तो ऑब्वियसली थोड़े से चेंजेस बॉडी में भी आते हैं, थोड़े से हार्मोन्स की वजह से भी चेंजेस होते हैं, तो जितना हो सके माताओं को खुश रहना चाहिए। ये अच्छे किताबें कुछ पढ़ें, धार्मिक किताबें पढ़ें, वो भी बच्चे के संस्कार बनाते हैं।
1: और हमें ये ध्यान रखना चाहिए परिवार में अगर कोई ऐसी महिला है जो माँ बन चुकी है जिसके कुछ इस तरह की परेशानी आ रही है, तो हम भी उनका निवारण करने का प्रयत्न करें, साथ ही बच्चे को संभालने में भी परिवार मदद करेगा, तो एक तरह से काफी सहूलियत हो जाएगी माँ को। कि हमारी चर्चा को सुनकर और आपकी बातें सुनकर पूरा विश्वास हो जाएगा कि माँ बनना एक स्त्री की जीवन की संपूर्णता है। डॉक्टर सतेंद्र कौर सलूजा, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, इतनी सार्थक बातचीत हमारे साथ की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: थैंक यू।
0: सखियों, उम्मीद है इस विशेष बातचीत से आपको कई उपयोगी जानकारियां मिली होंगी। और अब आइए माहौल को थोड़ा संगीतमय करते हैं और आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गाना।

सखियों, अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के उस महान हस्ताक्षर की जिनकी कविताओं ने न सिर्फ देश में आज़ादी की अलग जगाई बल्कि समाज में नारी के त्याग, गरिमा और आत्मसम्मान को एक नई पहचान दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की। आज उनकी जयंती पर पूरा देश इतिहास के इस महान साधक को नमन कर रहा है। गुप्त जी ने इतिहास और पुराणों की उन महिलाओं की आवाज़ को दुनिया के सामने रखा, चाहे वह महाकाव्य साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विरह हो या यशोधरा में भगवान बुद्ध की पत्नी की पीड़ा। नारी के इस दर्द और ममतामयी शक्ति को व्यक्त करती गुप्त जी की अमर पंक्तियाँ आज भी हर हृदय को छू लेती हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन सखियों, गुप्त जी ने नारी को केवल कमज़ोर या सहन करने वाली नहीं माना बल्कि उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी। जब महात्मा बुद्ध यशोधरा को रात में सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं तब यशोधरा का स्वाभिमान जाग उठता है। वह रोते हुए नहीं बल्कि गर्व से कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यही स्वाभिमान जब अपने अस्तित्व और अपने सपनों को पहचानता है तो जीवन को एक नई दिशा और नई उड़ान मिलती है। इसी प्रेरणादायक भाव के साथ आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की मखमली आवाज़ में एक मधुर गीत।

सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखकर जरूर बताइएगा। हमारा पता है आकाशवाणी उज्जैन, द्वारा केंद्र निदेशक, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, पिन नंबर 4560104560। और इसी के साथ अपनी सखी चंदना जैन को दीजिए आज्ञा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होगा।

रंग तिरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल, राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
4: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का, एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

0: यूनिवर्सिटी पर
1: मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाल वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाल वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का, संगीत एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए। अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शलायलपुरी के बोल संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोंसले की आवाज, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से,

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10। मेरे पास एक ही

0: कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज फेसबुक पर जो टेक्स्ट, जो इबारत हमने पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमारे संस्कारों ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। किसी अनजान शहर में जब कोई अकेला व्यक्ति अपने दिल और निगाहों को चौकन्ना रखकर जिंदगी की तलाश करता है और उससे घर आने की गुजारिश करता है, तब कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। रात भीगी भीगी हो, नदी नारे उफान पर हो, चंदा की चांदनी भी सीने में जलन पैदा करती हो, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमें ऐसा सुकून मिलता है जैसे तपती गर्मी में तरुवर की छांव हो। साथ ही ये आश्वासन भी मिलता है कि एक दिन सुखों की गागर हमारा स्वागत जरूर करेगी। तब सीने की जलन शांत होकर कोई गाता सा प्रतीत होता है और मन ख्वाबों के गलियारों में सो जाता है। ये आज की इबारत है, आपने पढ़ी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत

सारी बातें लिखी, प्रार्थना से संबंधित बातें लिखी और आज के गानों की क्या खासियत है ये भी उन्होंने बातें लिख करके भेजी। हमारे एक साथी की बात है कि आज की इबारत भारतीय जीवन दर्शन को चिन्हित करता आदर्शों का समागम है। ये सत्य को उजागर करता है कि भारतीय मानस में हर यात्रा चाहे वह भौतिक हो या जीवंत आस्था के सहारे ही शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब प्रकृति भी बैरी लगने लगे तब प्रार्थना इंसान के लिए अंतिम और सबसे सशक्त सहारा बनती है। ये इबारत अकेलेपन के दर्द, आस्था की शक्ति और उम्मीद के सूर्योदय की एक भावपूर्ण यात्रा है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि आज की इबारत जीवन की यात्रा का सुंदर चित्रण है, जहां हर कदम पर विश्वास, संघर्ष और उम्मीद साथ चलते हैं। जब इंसान किसी अनजान राह पर होता है तो सबसे बड़ा सहारा उसके संस्कार और ईश्वर पर उसकी आस्था होते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को वैसी ही शीतलता देता है जैसी तपती दोपहर में किसी घने तरुवर की छांव। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है कि एक दिन सुखों की गागर भी हमारे द्वार पर दस्तक देगी। धन्यवाद आपका। जी हाँ, आस्था की बात तो है ही, लेकिन साथ ही आज के गानों की एक और विशेषता है जो आपने समझ ली है। हम दोनों फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज़ है इसमें, सही लुधियानवी के बोल हैं और संगीत जयदेव का। जी हाँ, आज संगीतकार जयदेव को हम याद कर रहे हैं।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीत में सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है, वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है, कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया, ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज में अमोल पालेकर पर फिल्माया गया है, बोल किसके हैं ये आप बताइए हमें।

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर जिंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं सुनते आए हैं, अगर तुम हो संगीत सागर हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं, बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में ये गाना हमने सुना। आप ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहां रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहां आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती हैं, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है, कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो मैं दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरिया फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया ये गाना है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा ज़रूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी है वो लिख रही है कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप ज़रूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहाँ हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना, और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें, मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए। सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है। बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है, जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशुदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आतिफ असलम की आवाज में लीजिए सुनिए फिल्म रेस का गीत। गीत समीर का है और संगीत है प्रीतम का।

फिल्म संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में फिल्म दम लगा के हईशा का गीत। गीत लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल दतिया उपचुनाव में सातवें राउंड की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 3,295 मतों से आगे चल रहे हैं। उन्हें 31,437 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 28,141 वोट प्राप्त हुए हैं। मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 15 राउंड में संपन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षकों की मौजूदगी में प्रत्येक राउंड के परिणाम जारी किए जा रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को हुए मतदान में 1,57,473 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वहीं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी संस्थान को व्यापक वैधानिक ढांचा प्रदान करना है, ताकि यह सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजिट समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देशभर के नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलकर भविष्य की मोबिलिटी का रोडमैप तैयार करेंगे। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भोपाल समेत प्रदेश भर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादप्रद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम करीब 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा एवं आगरमालवा सहित प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पारस जैन का आज सुबह 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। पारस जैन कई बार उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश सरकार में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2005 से 2013 के बीच वे राज्य मंत्री के रूप में वन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों से जुड़े रहे। दिसंबर 2013 में उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वर्ष 2016 में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। अगले 2 दिनों में अधिकांश जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि 4 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से 5 अगस्त से प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के बनखड़ी क्षेत्र में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने निभौरा और करपा गांवों के बीच ओल नदी पर बने नए पुल का लोकार्पण किया। जबलपुर शासकीय आईटीआई में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में चयनित 30 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंडला कान्हा टाइगर रिजर्व में रीवाइल्डिंग और वन्यजीव प्रबंधन के अध्ययन हेतु कर्नाटक का प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचा और आगरमालवा जिले में सुरक्षा गार्ड पदों के लिए चयन शिविर आज से 12 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात

0: के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से

0: अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज मोहम्मद रफी की, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: सी कहाँ के,
1: हम चांद आसमां के,
0: हाय हाय वुरूद इतना,
1: हाँ हाँ वुरूद इतना,
0: चुप ये अदा है ये नशा,
1: हाँ हाँ

0: कन्हैया
1: हाय।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी आपको भी नमस्कार।
1: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जो आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
1: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
0: जी,
1: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे, वो भी हेल्दी।
0: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है, हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
1: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
1: जी,
0: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
1: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
0: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अशिक्षित हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं।
0: हाँ,
1: और इस दूध में जो जैसे आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
0: हाँ,
1: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
0: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
1: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
0: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
1: बिल्कुल, और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
0: बिल्कुल,
1: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
1: जी, और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी है और उनके पास परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
0: तो चलिए अब ये सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लोह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ

0: का दूध अपने आप में संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे हाँ, सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना, किसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल, कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
4: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
5: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
6: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
5: अब हम उसे कटवा लेना।
6: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
4: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
6: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
4: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को यह बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
5: बुढ़े की श्यामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
6: जी,
5: ये क्या बात है?
6: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
5: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
6: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
5: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
4: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
1: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
6: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
5: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
6: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
4: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
5: क्या बात है मनोहर सिंह?
6: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
5: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
4: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
7: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
6: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
1: चाचा मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
5: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं, अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
6: ठाकुर साहब इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
5: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
4: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
1: ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
4: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
7: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाए तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
4: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
6: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
3: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
0: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
8: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी हाँ। किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
0: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
8: बिल्कुल।
0: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
8: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन, क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
0: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
8: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: क्या क्या सीखा,
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी है।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ता रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भी जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे तो टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे दुकान पे ले जाए जहाँ पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती है, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज हमारे मूड को बहुत बेहतर

0: बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छू मंत्र। और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल। और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है। वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है। और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा। लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता यह है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल। जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहां से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है,
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने यूट्यूब पर देखकर सीखा है, और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगी, और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है, और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं, एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम,
2: हाँ,
3: है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
4: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का, तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉइड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉइड फोन, और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है, तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
3: बिल्कुल,
4: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
3: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
4: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
3: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मुड़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
4: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसकी व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी, वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोड़ घर भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है, क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है। थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
3: उसका जो मसाला है जी,
4: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री, यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेव, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है, और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अब एक गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं
1: भाई? हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को बेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुरी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार
1: सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात,
3: शुक्रिया एक बार और।
2: डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं
3: जी,
2: ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
3: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
2: जी,
3: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके पीछे लेंस रहती है। हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
2: जी,
3: उसके बाद पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
2: जी।
3: अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
2: जी,
3: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
2: जी, जी,
3: जब तक कि अपनी जिंदगी है। तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है
2: जी, जी।
3: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
2: जी।
3: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं।
2: अच्छा।
3: जो पैदाशी होता है बहुत कम रहता है लेकिन होता है। ओके। उसको भी ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
2: जी।
3: सभी के लिए अभी ऑपरेशन है और सभी के अच्छे उसके,
2: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
3: जांच में पता
2: हो रहा है।
3: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है। जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40-45-50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
2: इसकी क्या वजह हो सकती है?
3: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक,
2: अच्छा,
3: जो आया हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है, मेरे हिसाब से तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग जाए किसी को
2: जी,
3: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफ़ी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहाँ से फैलते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आँख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज़ करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा
2: जी,
3: काफ़ी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफ़ी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है
2: जी।
3: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफ़ेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं।
2: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
3: पक्का है
2: जी,
3: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
2: अच्छा,
3: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम का सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं।
2: अच्छा,
3: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती
2: जी, जी।
3: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
2: पूरी जिंदगी
3: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से, अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके
2: जी,
3: शी इज 91 ईयर, अर्सा हो गया 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है अब उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
2: जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
3: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था।
2: अच्छा,
3: तो मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
2: आजकल ऐसा नहीं है?
3: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
2: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
3: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम दिखाई दे रहा है
2: जी,
3: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर, उसको तोड़ के
2: तो
3: निकाल के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूं आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह
2: जी,
3: हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए
2: जी जी।
3: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए,
2: करेक्ट।
3: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
2: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
3: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है
2: जी,
3: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह, पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं
2: जी,
3: वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
2: बिल्कुल,
3: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया
2: जी, बिल्कुल
3: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया
2: जी,
3: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहां गिरेगा, आंख में जगह कहां है,
2: बिल्कुल,
3: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा
2: जी,
3: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सह लेगा
2: जी,
3: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे के नस खत्म हो गए तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी
2: जी जी।
3: तो सही टाइम पे इसका कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान
3: जी।
2: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है, किसी की मृत्यु

0: जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
1: जी बहुत जरूरी है,
0: जी
1: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
0: जी जी
1: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा?
0: जी
1: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है वो ऑपरेशन करके। काफी सेंटर्स हैं आजकल, तो ऑनलाइन आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना
0: जी
1: आंख
0: जी
1: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
0: जी
1: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
0: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये
1: जी
0: एक छोटा सा कदम
1: जी
0: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
1: सही
0: लोग
1: है।
0: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
1: नहीं, बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता,
0: जी
1: क्योंकि सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
0: जी
1: दिक्कत होती है।
0: जी तो
1: उनके
0: इससे
1: लिए
0: बहुत
1: भी
0: लोगों की मदद हो सकती है।
1: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
0: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
1: जी
0: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
1: ये नॉर्मल है। आई
0: जी
1: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
0: जी
1: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है। क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं।
0: जी जी
1: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम यह है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजुरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है।
0: जी
1: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजुरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
0: जी
1: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना।
0: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता है,
1: बहुत खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये
0: फैक्ट्रियां हैं
1: या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के।
0: जी
1: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन वो
0: बिल्कुल
1: हमारा सेट नहीं रहता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं रहेगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
0: खुद
1: ग्लास
0: नहीं कर सकते लोग।
1: और एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
1: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
0: हाँ ऑफकोर्स
1: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आइज तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में।

0: अभी तक ये कंसेप्ट
1: ये छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर पर,
0: आंखों के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं
1: जी,
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूँ कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं. न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता.
1: जी
0: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल. देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में?
0: जो नहीं फैशन है उसके आगे गया है, टोपी खरीद लो ऐसी, उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: हैं? ना ना ना नो नो नो नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर ग्लासेस है
1: जी,
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है. देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले.
1: जी
0: ये जो रोड साइड वाले हैं इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो फैशन के लिए है.
1: जी जी,
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं. उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है.
1: जी बिल्कुल. इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है. आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं. अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
1: जी,
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया. उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई. कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में. तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना
1: बहुत,
0: जरूरी है, बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं.

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन आ रही है, आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी,
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है।
0: हाँ हाँ,
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको
0: तब होता है,
1: तब वहां था एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा।
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दी है। इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है
0: जी।
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है
0: जी,
1: अपनी आंख को साफ कर रहा है
0: जी।
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती
0: जी।
1: तो हर टाइम जब ही हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा, ठंडा
0: हाँ,
1: पानी मारेगा
0: और वो तेज तेज
1: तेज मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है।
0: तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के ऊपर,
1: किसी भी परिस्थिति में। और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
0: ओके,
1: तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख को
0: जी,
1: पानी मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं
0: जी।
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है
0: जी।
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हमारे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई।
0: दिन में नहीं निकलती,
1: दिन में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए
0: जी।
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
0: ओके,
1: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए।
0: हाँ,
1: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट नहीं नहीं आंख लाल होगी, ये वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 पीएचडी जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए, ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था
0: जी जी।
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
0: लड़कों को भी,
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए
0: जी,
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस,
1: वहां पे लगा दिए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए।
0: हाँ,
1: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए
0: जी।
1: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को
0: जी।
1: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
0: नहीं।
1: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
0: क्योंकि सबसे नाजुक,
1: सबसे नाजुक चीज है। बहुत बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते
0: जी।
1: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजुरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता
0: जी।
1: वेरी सिंपल
0: जी।
1: सो लीव योर आइज अलोन। अकेले छोड़िए।
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं।

0: डालनी चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
1: जी जी, और ये हमें कहा गया है कि ये खतर योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
0: जी,
1: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
0: हाँ,
1: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
0: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
1: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आपको आराम आ रहा है
0: जी।
1: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, ठंडा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
0: सही है।
1: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
0: जी,
1: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
0: जी,
1: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया
0: तो
1: गिर गए, तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
0: जी।
1: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
0: जी, जी
1: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है
0: जी।
1: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
0: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
1: सेम पानी आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
0: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना, हमने देखी है इन आंखों की बहती खुशबू, गुलजार साहब का गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था
0: जी,
1: इसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25 दिन तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी।
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी जी,
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है, जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: ये जो

0: आज वो है, वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के तौर। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया
1: जी,
0: ठीक है। अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में
1: जी।
0: अच्छा, पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है
1: जी जी
0: ओके। आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है
1: जी,
0: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है
1: जी,
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है
1: जी जी।
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का, ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून पेशी अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी,
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम
1: जी।
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे थे और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें है ना
1: बिल्कुल।
0: नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है
1: जी,
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है, हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेक
0: बहुत जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सके और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते फिर आगे की

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी,
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है। हाँ, एक और चीज जो लोगों को देख, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है
0: जी,
1: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे। अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
0: जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये भी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है, क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है। तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम, वहां से वो सटक भी सकता है। इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
0: ये प्रेशर की वजह से होता है,
1: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
0: अच्छा,
1: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
0: जी जी,
1: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली।
0: जी जी,
1: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो तो क्या होने वाला है, वो
0: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
1: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान निकल जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी है?
1: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है, एक जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
0: ये क्या होता है?
1: सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
0: जी जी,
1: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
0: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
1: लक्षण कम दिखाई देता है।
0: अच्छा,
1: और कोई नहीं?
0: जी,
1: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
0: जी जी,
1: तो ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो। तो स्कैन करने को, बिकॉज स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना
0: जी,
1: तो हमको बराबर वो स्लाइसिस उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है
0: जी जी,
1: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शन ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको चार पांच लगते हैं या आते जाते रहते हैं, बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है
0: जी जी,
1: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ शरीर में देखिए लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं
0: जी जी जी,
1: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में सभी चीजों में, आप भी जानते हैं वेदर मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर दो तीन साल या पांच साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है
0: ये अपने आप में एक चमत्कार है,
1: हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है, आप भी जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया
0: बिल्कुल
1: उल्टा इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है
0: ये भी कमाल की बात है,
1: आप जानते हैं ना, वापस जाइए वापस 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
0: यस यस यस,
1: वर्चुअल इमेज है, अरे वर्चुअल कैसे हो गया,
0: जो हमारी आंखों में,
1: हम एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं, अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार, ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
0: कर सका, बचपन से मामला फिलोसफी की तरफ बढ़ गया,
1: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो नेचर हो भगवान हो जो भी हो दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में के आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जाते
0: यस डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें, ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है,
1: दोबारा कहता हूँ जरूरत हो तो जरूर डालना
0: ना हो डॉक्टर दें तब डालना,
1: हाँ अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर,
0: सेल्फ मेडिकेशन इज
1: डेंजरस, सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें जितना सेल्फ देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते हैं
0: जी जी,
1: हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू या मिमिकिंग अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
0: रिप्लेस करें
1: वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती, लेकिन अंत में केमिकल है ना
0: जी,
1: अगर नेचुरल है और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए वो बहुत फर्क है
0: सही कह रहा
1: हूं, वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता
0: जी
1: ओके, लेकिन मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए
0: जी,
1: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए
0: बिल्कुल, ऑफकोर्स बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन,
1: बॉटम लाइन एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
0: जी
1: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे,
0: बहुत तो जरूरी बात है
1: उसके लिए शुक्रिया, मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो है वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं, मरने तक शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखें, आंखें आपको जरूर साथ देगी, तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
0: बिल्कुल
1: आप महसूस नहीं करेंगे, टच भी इंपॉर्टेंट है फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है, तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें
0: जी।
1: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
0: क्या
1: कि किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ,
0: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही बॉटम लाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूं, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये
0: जी।
1: तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सांध्यकालीन सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार। महाकाल की पावन नगरी के सभी ऊर्जावान श्रोताओं का आज की इस बेहद सुहानी और खुशनुमा शाम में आकाशवाणी उज्जैन के आपके अपने पसंदीदा और चुलबुले मंच युवाणी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आशुतोष।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त कौमुदी। आशुतोष, आज स्टूडियो में कदम रखते ही मुझे हवा में एक बहुत ही खास गहराई, संवेदनशीलता और उम्मीद की नई रोशनी महसूस हो रही थी। आज की शाम जितनी खूबसूरत है, हमारी बातें उससे कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण होने वाली हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कौमुदी। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बेहद खास और प्रेरणादायी है, क्योंकि यह अवसर समर्पित है भारतीय अंगदान दिवस को। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारा एक निस्वार्थ कदम किसी की बुझती जिंदगी को नई सांसें और नया जीवन दे सकता है।
1: वाह आशुतोष, यानी ये दिन केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत जिंदगियों को नमन करने और नई उम्मीदें जगाने का पावन अवसर है, जिन्हें अंगदान के जरिए जीने का नया सवेरा मिला है। इसीलिए दोस्तों, आज का हमारा विशेष विषय है भारतीय अंगदान दिवस विशेष, अंगदान, नई उम्मीद, नया सवेरा।
0: कितना खूबसूरत और प्रेरणादायी विषय है कौमुदी। जब हम अंगदान की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा उपहार है जो एक इंसान दूसरे को दे सकता है। जाते जाते किसी की बुझती जिंदगी में उम्मीद का चिराग जला देना, भला इससे बड़ा पुण्य और नैतिक धर्म क्या हो सकता है।
1: सही कहा आशुतोष, और इसीलिए आज का ये लाइव मंच पूरी तरह से आपका है श्रोताओं। आज हम आपकी सोच, विचार और अनुभव सुनना चाहते हैं। क्या आपने कभी अंगदान की शपथ ली है? क्या आपके किसी परिचित ने अंगदान करके किसी को नया जीवन दान दिया है?
0: या फिर आप अंगदान के बारे में क्या सोचते हैं? समाज में इसके प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे युवाओं का क्या नजरिया है? तो फिर देर किस बात की दोस्तों, उठाइए अपना फोन और सीधे

0: हमारे साथ लाइव जुड़िए। हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए हमारा दूरभाष क्रमांक है 4054-1911, साथ ही उज्जैन का एसटीडी कोड है 0734।
1: यानी आपको बस डायल करना है 0734-4054-191। फोन लाइंस आपके लिए पूरी तरह खुल चुकी हैं और हम आपकी आवाज़ सुनने और आपके विचार जानने के लिए पूरी तरह बेताब हैं। और इसी के साथ हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं उनके अनुभव।
0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप?
2: जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी प्रेम सिंह जी, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं प्रेम सिंह जी, वो बहुत गंभीर और बहुत ही खास है हमारे लिए। हम बात करें अंगदान के ऊपर। आप अंगदान के बारे में जानते हैं, ऑर्गन डोनेशन के बारे में?
2: जी बिल्कुल जानते हैं। कुछ लोग अंगदान करने से मतलब कुछ क्या, बहुत सारे लोग कतराते हैं अंगदान करने से, लेकिन जैसे कि आप बताओ, किसी को किडनी की जरूरत होती है, किसी को आँख की जरूरत होती है, किसी को हार्ट की जरूरत होती है, लेकिन जब किसी की असमय डेथ हो जाती है या फिर ऐसे कहते हैं किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनको जो अंग होते हैं, उनके जो अंग होते हैं, किसी ऐसे जरूरतमंद को मतलब लगाया जाने से मतलब उसकी जिंदगी में मतलब खुशियाँ आ जाती है। तो इस विषय में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर के पहले तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कभी हो भी जाए तो अंगदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: जी प्रेम सिंह जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसी के साथ प्रेम सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी आपने ऐसी कोई इच्छा जताई अपने परिवार में, या आपने कभी ऐसा चाहा कि आप अंगदान करें या किसी प्रकार का नेत्रदान करें?
2: जी ऐसे तो हमने इच्छा नहीं जताई सर, लेकिन बट ऐसे पहले तो कह भी नहीं सकते कि हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो जाए या ऐसे हम अंगदान करना चाहें, बट ऐसे अगर किसी सिविल हुआ या फिर ऐसे कोई संस्था हुआ, वहाँ पर अगर अपना रजिस्टर में नाम एडमिट करवा दिया जाए, तो मतलब अगर ऐसे कभी होता है तो वो लोग आके हमारे डेड बॉडी को ले जाए और मतलब जब जिस भी अंग की जरूरत पड़े वो वहाँ से निकाल लिया जाए।
1: प्रेम सिंह जी, आपके हिसाब से अंगदान के प्रति जागरूकता क्यों जरूरी है?
2: जी अंगदान के प्रति जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी जरूरतमंद को अगर किसी की अंग से या खुशियाँ मिल जाए तो उसके जीवन में मतलब खुशियाँ आ जाते ही।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने प्रेम सिंह जी। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए।
2: थैंक यू सो मच, मैं आकाशवाणी उज्जैन नियमित रूप से सुनता हूँ और पार्टिसिपेट भी करता हूँ।
1: धन्यवाद। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि केवल एक अंगदाता 8 अलग अलग लोगों को नया जीवन दे सकता है? जब कोई व्यक्ति ब्रेन डेड घोषित हो जाता है तो उसका हृदय, 2 फेफड़े, लिवर, 2 किडनियां और आंतें बचाई जा सकती हैं।
0: बिल्कुल कौमदी। और इतना ही नहीं, उनके टिश्यूज से 75 से अधिक लोगों का जीवन सुधर सकता है। जीवन दान की यह अद्भुत क्षमता साबित करती है कि इंसानियत से बड़ा कोई उपकार नहीं है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आशुतोष, क्या तुम्हें पता है किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मेडिकल तथ्य है? डॉक्टर आमतौर पर पुरानी किडनी को शरीर से बाहर नहीं निकालते, नई स्वस्थ किडनी पेल्विस क्षेत्र में नीचे ही जोड़ दी जाती है।
2: अद्भुत बात है कौमुदी, यानी शरीर में 3 किडनियां हो जाती हैं। चिकित्सा विज्ञान के ऐसे चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि सही जानकारी और वैज्ञानिक सोच से मन का भय दूर हो सकता है। श्रोताओं, अगर आप भी जानते हैं ऐसा ही कोई रोचक तथ्य या आपके पास हैं ऐसे कोई विचार इस गंभीर विषय पर हमारे साथ साझा करने के लिए, तो लगाइए हमें फ़ोन। हमारा फ़ोन नंबर है 0734-4054-191। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी भैया नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: योगेश जी आपके यहाँ का मौसम कैसा है आज?
1: थोड़ी सी बारिश हुई है, बाकी अभी तो थोड़ा सा धूप रहता है ज्यादातर।
0: ठीक है योगी जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का विषय है अंगदान। हम बात कर रहे हैं हमारे ऑर्गन डोनेशंस के बारे में, जो हमारा हार्ट डोनेशन होता है, किडनी डोनेशन होता है, तो इस पर आपका क्या विचार है?
1: ये तो मतलब बहुत परोपकार का काम है, क्योंकि दूसरों के काम आना या दूसरों को जीवन देना, इससे बड़ा एक मानव होने के नाते हमारे लिए कोई इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों को नया जीवन दे सकता है।
2: योगेश जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे समाज में अंगदान को लेकर जागरूकता की थोड़ी कमी है?
1: जी बिल्कुल कमी है। लोग कई तरह से सोचते हैं कि दान करेंगे तो अगले जीवन में, अगले जन्म में कुछ सही ढंग से नहीं पैदा हो पाएंगे, या और अन्य तरह का कोई क्षति होगा, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता।
0: जी जी योगी जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि कई प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं, योगी जी इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी आपने प्रयास किया किसी प्रकार का संकल्प लेने का, या कभी किसी प्रकार के शिविर में आपने पार्टिसिपेट किया हो?
1: जी पार्टिसिपेट किए हैं और फैमिली में किए भी हैं।
0: जी तो इसी के साथ योगेश जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आज के जो युवा हैं वो थोड़े से इसमें जानकारी कम है उन्हें, या वो प्रयास करते हैं इस चीज़ में आगे बढ़ने का, पर थोड़ी सी जो हमारे आसपास इन्फॉर्मेशन की कमी है उस वजह से पीछे रह जाते हैं। तो योगेश जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे युवाओं को, सुनने वाले श्रोताओं को इस विषय पर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश तो यही कह सकते हैं भैया, जो युवा पीढ़ी होता है किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये एकदम स्वेच्छा से किया जाने वाला दान है, दूसरों के जीवन बचाने वाला काम है, तो बढ़ चढ़ कर बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए, इससे किसी तरह का कोई हानि नहीं है।
0: जी योगी जी आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: आशुतोष। कुछ लोग अंधविश्वास में मानते हैं कि अंगदान से अगले जन्म में अंग कम हो जाएंगे, जबकि दुनिया का हर प्रमुख धर्म अंगदान को सर्वोच्च दान और मानवता की सबसे बड़ी सेवा मानता है।
0: बिल्कुल सही कहा कौमुदी, जैसा कि हमारे भी श्रोता योगेश जी ने भी हमें बताया, धर्म का मूल ही दया और सेवा है। किसी दूसरे इंसान के काम आना और उसे नया जीवन देना ही हमारे संस्कारों का सबसे बड़ा और पवित्र सार है। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, नेत्रदान को लेकर अक्सर लोगों में ये भ्रम होता है कि पूरी आंख निकाली जाती है, जबकि ये सच बिल्कुल भी नहीं है। आंख का केवल पारदर्शी ऊपरी परत, जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसे ही प्रत्यारोपित किया जाता है।
1: सच कहा कौमुदी, चेहरा बिल्कुल भी विकृत नहीं होता। यह छोटी सी समझदारी किसी की अंधेरी दुनिया में रोशनी का उजाला भर सकती है और एक
0: बिल्कुल
1: दृष्टिहीन को नई दुनिया दिखा सकती है। इसी के साथ हमसे हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं गांव भीलवाड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान से।
1: जी, अपना शुभ नाम बताइए।
3: राजूलाल मेहर।
2: नमस्कार राजूलाल जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया सर। मैडम
2: राजूलाल जी, आज हम बात कर रहे हैं अंगदान के बारे में, जो कि एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है। लेकिन हम अक्सर अंगदान की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंगों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? क्या आप अपने अंगों को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जो आप हमारे श्रोताओं को भी बताना चाहेंगे?
3: जी, ये अपने अंगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, रोज व्यायाम की जरूरत पड़ती है, नियमित प्रयास करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। उससे क्या है, शरीर एकदम तंदुरुस्त रहेगा। और
1: जी,
3: अंगदान के, हाँ
2: बिल्कुल बिल्कुल राजू जी, आपने बहुत अच्छी बात की। नियमित व्यायाम से न सिर्फ हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक उपस्थिति छोड़ सकते हैं कि हम आगे चलकर कुछ अंगदान या ऐसा कुछ संकल्प ले सकें।
1: राजू जी, इसी के
3: जो क्या है, जो भी अंग

0: दान करेंगे, नेत्रदान करेंगे तो दूसरों को रोशनी मिलेगी। अगर शरीर दान करेंगे तो दूसरों को बाल बच्चों को, पढ़ाई करने वालों को, उनको शिक्षा मिलेगी, ये मेरा मानना है।
1: जी राजूलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपने किसी प्रकार के ऐसे शिविर में पार्टिसिपेट किया हो, या आपके यहाँ पे, आपके गांव में, आपके शहर में किसी प्रकार का ऐसा शिविर लगता है जहाँ अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाई जाती हो?
0: शिविर लगता हो तो मुझे मालूम नहीं है, शिविर में मतलब हमेशा मतलब रेडियो पे जानकारी मिलती रहती है।
1: जी राजूलाल जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई। आकाशवाणी में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
2: जो लोग अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं उनके लिए प्रक्रिया बहुत आसान है आशुतोष। भारत सरकार का आधिकारिक नोटो यानी NOTTO पोर्टल आपको घर बैठे आधार कार्ड के जरिए डिजिटल डोनर कार्ड बनाने की सुविधा देता है।
1: बिल्कुल सही कौमुदी, डिजिटल इंडिया की यह पहल युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। आज ही संकल्प लेकर डोनर कार्ड पाना अपने आप में एक बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। इसी के साथ दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि अंगों के साथ साथ टिश्यू डोनेशन का भी बहुत महत्व है? त्वचा, हड्डियां और हृदय के वॉल्व दान करके गंभीर रूप से जले हुए मरीजों और हादसों से पीड़ितों का इलाज किया जा सकता है।
5: बिल्कुल सही कहा कौमदी। विशेषकर स्किन डोनेशन गंभीर रूप से झुलसे लोगों के लिए एक प्राकृतिक बैंडेज का काम करता है। आपका एक फैसला किसी पीड़ित को दर्द से राहत और नई जिंदगी दे सकता है।
4: श्रोताओं, अगर आपके आसपास या आपकी पहचान में भी किसी ने अंगदान का संकल्प लिया हो या अंगदान किया हो और आप अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो डायल कीजिए 0734-4054-191 और जुड़िए हमारे साथ। अब आपके कॉल के इंतज़ार के साथ चलिए सुनते हैं अगला गीत।

0: दोस्तों आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से।
1: नमस्कार,
0: आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम दुर्गोविंद मिश्रा है। मैं उड़ीसा झारखंड।
0: जी गुरुगोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप?
2: जी सर बढ़िया है। और ये श्रावण का महीना महीना में हर संस्था को और जितना भी उज्जैन में जितना उपस्थापिका उपस्थापक है और जितना भी कर्मचारी है सबको श्रावण महीना का बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन।
0: आपको भी गुरुगोविंद जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं श्रावण के महीने की, सोमवार की, बाबा महाकाल की तरफ से बहुत सारा आपको प्रणाम। गुरुगोविंद जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है अंगदान। हम बात कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशंस के बारे में, और ऑर्गन डोनेशंस में सबसे जरूरी होता है हमारा दिल। तो हम आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि दिल हमारे लिए जितना जरूरी है, हमारी सेहत के लिए जितना जरूरी है, हम जिसे देंगे उसके लिए भी उतना ही जरूरी है। तो आप दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं?
2: जी सर देखिए, जैसे कि मैंने दिल का जितने बात बोले, हमारा हमारा शरीर जो है शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए क्योंकि मेरा सर शुगर है तो मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह सुबह मैं मैंने 4 बजे जग कर सुबह थोड़ा सा प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं 1 घंटा के बाद मैं थोड़ा सा ये हमारा करेला का जूस पीता हूँ, फिर 1 घंटा के बाद लाऊ का जूस पीता हूँ, फिर 2 घंटा के बाद ये हमारा चना और मूंग का मैंने ये जो उसको जो मैंने गजा बोलते हैं उसको मैंने भिगा कर रखते हैं उसको मैं सुबह सुबह मैंने खाली पेट में खाता हूँ।
0: जी बिल्कुल जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे श्रोता इस टिप की तरह उपयोग करेंगे। बिल्कुल जी, इसके साथ ही जी
2: और मैं आधे मैंने ये हमेशा मेरा मैंने ये रोटी खाना है, चावल तो मैं मैंने कम ही खाता हूँ। जैसे कि मैंने कोई हमारा पर्व हो गया तो थोड़ा सा चावल खाना पड़ता है, नहीं तो मेरा रोटी हमेशा है।
0: जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसा आपने बताया आपको थोड़ी सी शुगर की समस्या है, तो उसमें भी चावल खाना डॉक्टर हमें कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए।
2: जी जी
0: जी बिल्कुल जी, इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कई लोग ये मानते हैं कि जो अंगदान करना है उसके लिए जो बहुत उम्र हो जाती है, जो बहुत बुजुर्ग लोग हो जाते हैं वो नहीं करते हैं, पर ये अपने आप में एक भ्रांति है, हर उम्र का व्यक्ति ये कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आपके परिवार में, परिचित में या आसपास में कभी किसी ने अंगदान किया है?
2: हाँ सर, किया है सर। हमारा हमारा

0: और ये और एक तो है, मैंने ये बहुत साल का बात है, फिर भी हो गया होगा करीबन अभी से 15 साल पहले का बात है। एक तो बुजुर्ग आदमी थे, वो करीबन 70 साल का थे, तो वो भी अपना मैंने अंग दान किए हैं।
1: जी बिल्कुल जी, आपने कितनी अच्छी बात बताई कि 15 साल पूर्व भी लोगों में इतनी जागरूकता थी कि वो नेत्रदान के प्रति सजग थे, उन्होंने अपनी आंखें दान करी। बिल्कुल जी, हाँ
0: और ये
1: जी,
0: और सर एक एक चीज बोलता हूँ, वो जो 70 साल का जो मैं बोल रहा हूँ, वो मैंने हमारा गांव में एक खुद बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन बाकी फिर भी खुद डेली आकर एक तो गड्ढा बनाया है जहाँ पे पानी मैंने रह सकता है और ये पशु जंतु उसमें पानी को पी सकते हैं, उसके लिए तो गड्ढा बनाए हैं, खुद जाकर पत्थर उठा उठा कर मैंने वहां से मैंने गड्ढा बनाए हैं।
1: जी बिल्कुल जी, कितनी कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, कितनी मोटिवेशन की तरह काम करते हैं कि इस उम्र में भी वो इतने स्वस्थ थे और इतना अच्छा कार्य कर पाते थे। इसके साथ ही हम आपसे ये जानना चाहते हैं बोलगोविंद जी, कि ऐसा माना जाए कि जो नेत्रदान है वो किसी अन्य व्यक्ति की आंखों की जो रोशनी होती है उसे जगाने का काम करता है, तो हमारे इतने सारे युवा हैं, इतने सारे सुनने वाले श्रोता हैं जो इस विषय में कभी कभी जानकारी के अभाव की वजह से इतने सजग नहीं हो पाते हैं, जैसे आपने बताया कि 70 वर्ष की उम्र में भी कोई कर रहा है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: जी सर, और एक चीज बता रहा हूँ, अभी अभी ये हाल ही में हमारा झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक तो हमारा ब्राह्मण का एक तो मैंने बच्चा है, वो 5 साल का बच्चा था, 5 साल का बच्चा, उसने अपना मैंने मामा के साथ, अपना मामा नहीं अपना दादा के साथ मैंने रास्ते में जा रहा था और एक तो गाड़ी में टक्कर खा गया, तो वो बच्चा पूरा मैंने वहां पर ही खत्म हो गया। तो जब वो वहां पर खत्म हो गया तो वो बच्चा तुरंत मैंने लेकर बच्चा का पहला आंख निकाले और आग को मैंने अंगदान किए हैं।
1: जी जी जी जी बोलगोविंद जी, तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही
0: वो मैंने उनका उनका उनका घर का कहने का मैंने अर्थ ये है कि भाई हमारा बच्चा चला गया, लेकिन किसी का बच्चा का मैंने आग भी हो जाएगा। और हाँ, मैं सही अभी ठीक मेरे को याद आया कि उसी जब उसका आग मैंने निकाल कर और उसी मैंने हॉस्पिटल में एक तो बच्चा का आग नहीं था और वो आग लगा कर वो बच्चा देखा है उसी दिन।
1: जी बोलगोविंद जी, आपने
0: उसी दिन का बात है,
1: जी जी
0: उसी दिन क्या उसी हॉस्पिटल में का बात है।
1: बहुत अच्छी आपने बात बताई हमें कि ये बिल्कुल इस प्रकार से घटना हुई जिसमें उन्होंने नेत्रदान किया अपने बालक का और वहीं किसी दूसरे बालक को नेत्र को रोशनी मिली।
0: ये हमारा घटना का बात है, ये हालिया भी 2-3 महीना का बात है।
1: बहुत अच्छी बात है, हमें जानकर बहुत अच्छा लगा।
0: मैं सर आपका माध्यम से हर श्रोता को बोलता चाहता हूँ भाई, अपने से हो सके तो जितना भी हो सकते ये सब दान करना चाहिए, इसमें कुछ मैंने ये नहीं है।
1: जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई बोलगोविंद जी, और ये हमें जान के बहुत अच्छा लगा कि आज के जागरूक समाज की ये इतनी अच्छी सोच है, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। हम आपको बता दें कि आज भारतीय अंगदान दिवस भी है।
0: जी अच्छा ठीक है सर, वो तो मतलब मालूम था। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मैंने ये मेरा तरफ से मैंने हार्दिक शुभकामनाएं कि सब मैंने अंगदान प्रति आगे बढ़े।
1: जी बोलगोविंद जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: आशुतोष, अभी हमारे कॉलर ने हमसे कितनी अच्छी बात कही ना, उनके अनुभव और उन्होंने जो अंगदान के किस्से सुनाए वो कितने ही प्रेरणादायक हो सकते हैं हमारे और हमारे श्रोताओं के लिए भी।
1: बिल्कुल,
2: अक्सर लोग सोचते हैं कि बुजुर्ग होने पर अंगदान नहीं किया जा सकता, पर जैसे कि हमारे कॉलर ने बताया, ये सच नहीं है। अंगदान में उम्र से ज़्यादा अंगों का स्वास्थ्य मायने रखता है। 70-80 साल की उम्र में भी अंग उपयोगी हो सकते हैं अगर आपने अपने अंगों का ख्याल रखा है।
1: बिल्कुल सही बात है कौमुदी, जैसे कि हमारे श्रोता ने हमें बताया भी कि वो 70 वर्ष की उम्र में अपने गाँव में जाकर पानी का गड्ढा खोदते थे अपने पशुओं के लिए, तो वो अपनी आंखों का वाकई कितना देखभाल रखते थे, और फिर उन्होंने नेत्रदान भी किया। परोपकार और सेवा भाव की कोई उम्र नहीं होती कौमुदी। एक बुजुर्ग व्यक्ति का लिया गया यह फैसला किसी युवा या बच्चे को नया जीवन देकर समाज में अमर हो जाता है। इसी के साथ आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी नोटो पोर्टल के बारे में और कैसे उस पर पंजीकरण कर कर हम ऑनलाइन बैठकर हमारे आधार कार्ड के जरिए डोनर कार्ड बना सकते हैं, लेकिन आशुतोष, नोटो पोर्टल पर पंजीकरण करना पहला कदम है, मगर उससे ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने परिवार के साथ इस बारे में खुलकर चर्चा करना, क्योंकि विषम परिस्थितियों में परिवार की सहमति ही अंतिम फैसला होती है।
1: बहुत गहरी बात कही तुमने कौमुदी। जब हम घर पर इस विषय में बात करते हैं तो पुरानी भ्रांतियां दूर होती हैं और परिवार को हमारे नेक विचारों का पता चलता है, जो भविष्य में बहुत काम आता है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, अंगदान दो प्रकार से हो सकता है। पहला, जीवित अंगदान, जहां व्यक्ति अपनी किडनी या लिवर का कुछ हिस्सा दे सकता है, और दूसरा ब्रेनस्टेम डेथ के बाद होने वाला कैडवरिक अंगदान।
1: बिल्कुल सही कहा कौमुदी, दोनों ही रूप इंसानियत के उच्चतम स्तर को दर्शाते हैं। एक व्यक्ति का निस्वार्थ फैसला किसी परिवार की बिखरती हुई खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए बचा सकता है। श्रोताओं, अगर आपके पास भी हैं ऐसे ही कुछ रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, या आपके पास है कोई किस्सा अंगदान से जुड़ा, तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें फ़ोन लगाने के लिए हमारा नंबर डायल करें 0734-4054-191। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, क्या हम जानते हैं कि जब किसी अंग को एक शहर से दूसरे शहर तुरंत पहुंचाना होता है तो ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन मिलकर ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं। बिना किसी रेड लाइट के एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल पहुंचती है।
1: यह देखकर गर्व होता है कौमुदी, जब पुलिस, डॉक्टर्स और आम जनता मिलकर एक जीवन को बचाने के लिए समय से दौड़ लगाते हैं, तो यह व्यवस्था नागरिकता के प्रति सबसे बड़ा सम्मान दिखाता है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, आज भारतीय अंगदान दिवस के इस विशेष अवसर पर हमारे श्रोताओं ने अंगदान जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर जिस समझदारी और उत्साह से अपने विचार साझा किए हैं, उनसे मन को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर दिया है।
1: बिल्कुल सही कहा कौमुदी, आज का शो सचमुच कमाल का था। हमारे श्रोताओं के कॉल्स ने साबित कर दिया कि आज का युवा सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि व्यवहारिक बदलाव में विश्वास रखता है।
0: बिल्कुल आशुतोष, जब हमारे श्रोता पुरानी भ्रांतियों और अंधविश्वासों को तोड़कर इस तरह अंगदान जैसे संकल्पों को लेकर आगे आते हैं तो समाज में सचमुच एक नया सवेरा होता है।
1: सच कहा कौमुदी। प्यारे दोस्तों, अंगदान किसी इंसान को मरने के बाद भी जीवित रखने का सबसे पवित्र और व्यवहारिक जरिया है। आज जितने भी श्रोता हमसे लाइव जुड़े और जो लाइंस व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर पाए, आप सभी की इस जबरदस्त भागीदारी के लिए आकाशवाणी उज्जैन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, जाते जाते हम अपनी श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि आज ही अपने परिवार के साथ बैठकर अंगदान पर खुलकर चर्चा करें, भ्रम दूर करें और आधिकारिक पोर्टल नोटो पर जाकर अंगदान का संकल्प जरूर लें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी के बुझते चिराग को फिर से रोशन कर सकती है।
1: क्या बात है कौमुदी, बहुत ही खूबसूरत और विचारणीय नोट पर आज हम शो को विराम दे रहे हैं। दोस्तों, सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन, युवाणी फिर लौटेगी कुछ और नई तरंगों और उमंगों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, जीवन का सम्मान कीजिए और दूसरों के जीवन में उम्मीद की किरण बनिए।
0: इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, आपके साथ हम थे आपके रेडियो मित्र कौमुदी
1: और आशुतोष।
0: नमस्कार, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र आदेश शिंदे। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या में हार्दिक स्वागत है। आज की भजन संध्या विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आज का दिन अत्यंत पावन है श्रोताओं, क्योंकि आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है, वह दिन जब संपूर्ण अवंतिका नगरी शिवमय हो उठती है। आज ही साक्षात भगवान श्री महाकालेश्वर महाराज की सवारी नगर भ्रमण पर निकलती है। जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तब भगवान श्री महाकालेश्वर अवंतिका नगरी में भ्रमण पर निकले हुए हैं, और यह कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य अनुभव है जिसमें स्वयं ईश्वर अपने सिंहासन से उतरकर अपनी प्रजा के बीच आते हैं, उनका हाल जानने, उनके दुख दर्द को समझने और उस दुख दर्द को दूर करने। यह वही भाव है जो एक माता पिता अपनी संतान के प्रति रखते हैं। निरंतर चिंतित, निरंतर सजग, अपने बच्चों को हर विपत्ति, हर मुश्किल और हर आपदा से बचाने को तत्पर। महाकाल की यह सवारी उसी असीम वात्सल्य का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जैसा कि कहा जाता है, ट्रू डिवोशन इज नॉट द डिस्टेंस वी ट्रैवल टू रीच गॉड, बट द लव विथ विच गॉड वॉक्स द डिस्टेंस टू रीच अस। आज महाकाल भगवान स्वयं वह दूरी तय कर अपने भक्तों तक आ रहे हैं। इसी पावन अवसर पर आइए हम भी अपने हृदय में भक्ति का यह दीप प्रज्वलित करें और सुने कुछ ऐसे भजन जो भगवान शिव की महिमा, उनकी करुणा और उनके प्रति समर्पण के भाव को शब्दों में पिरोते हैं। हमारा पहला भजन आधारित है गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक संस्कृत स्तोत्र पर। इस स्तोत्र का भाव अत्यंत गहन है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास अर्पण करने को स्वर्ण, रत्न अथवा बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं, परंतु मैं अपने मन से ही आपकी पूजा करता हूँ, अपने मन को ही आपका आसन बनाता हूँ, अपने विचारों के जल से आपको स्नान कराता हूँ। यह मानस पूजा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति के लिए बाह्य साधनों से अधिक आवश्यक है निर्मल और समर्पित हृदय। आइए सुनते हैं यह भावपूर्ण रचना।

श्रोताओं, मन की इसी पवित्रता के भाव को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं हिमालय की उन ऊंचाइयों की ओर, जहां स्वयं भगवान शिव केदारनाथ धाम में विराजमान हैं। कहा जाता है कि जब पांडवों ने भगवान शिव से भेंट करने का प्रयत्न किया तो भगवान ने बैल का स्वरूप धारण कर लिया और धरती में समा गए, किंतु उनकी पीठ केदार क्षेत्र में प्रकट रह गई, जो आज भी पूजी जाती है। अगले गीत में इसी दिव्य धाम और भगवान शिव के उसी स्वरूप की स्तुति की गई है, जो देवों के देव हैं, जो संहारक भी हैं और करुणा के सागर भी। यह भजन भक्त के हृदय में उठने वाली उसी श्रद्धा के स्वर को आवाज देता है, जो हिमालय की गोद में बैठे उस योगेश्वर के प्रति सहज उत्पन्न होती है।

श्रोताओं, भगवान शिव केवल योगी अथवा तपस्वी ही नहीं, वे तो अपने भक्तों के लिए पिता समान आश्रय दाता भी हैं। यही कारण है कि उन्हें श्रद्धा से बाबा कहकर पुकारा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक संतान अपने पिता से हर संकट में सहारे की अपेक्षा करती है। अगला भजन इसी भाव की सरल परंतु मार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसमें भक्त अपने आराध्य से यही प्रार्थना करता है कि हे बाबा, आप सदैव मेरे साथ रहें, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे जीवन की हर कठिनाई से उबारें। यह भजन उस अटूट विश्वास का प्रतीक है जो एक भक्त को अपने प्रिय भोलेनाथ पर होता है। आइए सुनते हैं अगला भजन।

श्रोताओं, भगवान शिव को सत्य और सुंदरता का परिचायक माना गया है और यह केवल दो विशेषताएं ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन भी है। सत्य अर्थात जो शाश्वत है, शिवम अर्थात जो कल्याणकारी और मंगलमय है, और सुंदरम अर्थात जो सौंदर्य से परिपूर्ण है। भारतीय चिंतन में यह त्रिवेणी परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को उजागर करती है। यह भजन इसी दार्शनिक भाव को अत्यंत सहज और मधुर संगीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जहां ईश्वर की उपासना सत्य, शिव और सौंदर्य की उपासना बन जाती है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की मधुर आवाज में यह अगला भजन।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंत में हम चलते हैं कैलाश पर्वत की उन ऊंची वादियों की ओर जहां भगवान भोलेनाथ अत्यंत सहज और सरल रूप में निवास करते हैं। यह विशेष है कि सृष्टि के सबसे शक्तिशाली देव होते हुए भी भगवान शिव का जीवन सबसे अधिक सादगीपूर्ण है। न कोई राजसी वैभव, न कोई आडंबर, केवल भस्म, रुद्राक्ष और त्रिशूल। यही सरलता उन्हें समस्त भक्तों के अत्यंत निकट और आत्मीय बना देती है। यह भजन उसी दिव्य निवास स्थान और भगवान शिव के उसी निश्चल स्वरूप की स्तुति करते हुए भजन संध्या के इस पावन क्रम को विराम देगा। तो आइए सुनते हैं फिल्म ओ माई गॉड 2 से हंसराज रघुवंशी का यह गीत

श्रोताओं, आज श्रावण के इस प्रथम सोमवार पर जब स्वयं महाकाल महाराज अपनी सवारी के माध्यम से अपनी प्रजा के बीच पधार रहे हैं, हमने भी इन भजनों के माध्यम से उन्हीं की भक्ति में कुछ पल व्यतीत किए। भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, यह हृदय की वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच की समस्त दूरियां मिट सी जाती हैं। जैसा कहा गया है, फेथ डज नॉट नीड टू सी द एंटायर स्टेयरकेस, जस्ट इनफ टू टेक द फर्स्ट स्टेप। और यही पहला कदम आज हमने इन भजनों के माध्यम से उठाया है। आशा है आज की भजन संध्या की यह प्रस्तुति ने आपके हृदय को शांति और श्रद्धा से परिपूर्ण किया होगा। भगवान महाकालेश्वर की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। अब आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।

102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। शाम के 6:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

नमस्कार, फिल्म संगीत में मैं आदेश शिंदे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह विशेष अंक हम समर्पित कर रहे हैं राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को, जिनकी आज जयंती है। हिंदी साहित्य में जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, वे मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव राष्ट्र प्रेम, नारी गरिमा और भारतीय संस्कृति के मूल्यों के संवाहक रहे। उनकी अमर कृति साकेत और यशोधरा आज भी हिंदी साहित्य के गौरव ग्रंथों में गिनी जाती हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से यह संदेश दिया कि सच्चा जीवन वही है जो परोपकार और राष्ट्र सेवा में व्यतीत हो। उनकी यह पंक्ति आज भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में गूंजती है, वही मनुज है जो मनुजता पर उपकार करे। उनका संपूर्ण जीवन इसी भावना को समर्पित रहा कि व्यक्ति का कर्तव्य केवल स्वयं तक सीमित न रहकर समाज और राष्ट्र के प्रति भी हो। उन्हीं के इसी राष्ट्र प्रेम और त्याग की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसा गीत जो देशभक्ति के उसी उदात्त भाव को स्वर देता है, जहां मातृभूमि के लिए समर्पण ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है। सुनते हैं फिल्म कर्मा से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के स्वर में यह गीत।

श्रोताओं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की स्मृति में प्रस्तुत यह गीत उसी राष्ट्रभक्ति और समर्पण के भाव की याद दिलाता है जिसे उन्होंने अपने साहित्य में सदैव प्रतिष्ठित किया। उनकी रचनाएं आज भी हमें यह प्रेरणा देती हैं कि राष्ट्र और समाज के प्रति हमारा कर्तव्य सर्वोपरि है। इसी के साथ फिल्म संगीत के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: था। इसमें लगभग 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन की बोगनी की गई है। सोयाबीन के कम होते उत्पादन के चलते किसानों ने खरीफ के सीजन में मक्का और धान की बुवाई का रकबा भी सीजन में बढ़ाया है। ऐसे में प्रत्येक फुटबड़े से हो रही हल्की बारिश के चलते जिले के किसानों ने अपनी बुवाई का लक्ष्य 100% पूर्ण कर लिया है। किसानों का मानना है कि अंतिम दौर में हुई बारिश के कारण फसल खराब होने से जरूर बच गई है। जिले का सामान्य औसत बारिश 44 इंच का है। इस बार बारिश के सीजन में अब तक 26 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस बारे में जिला किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक अशोक उपाध्याय ने बताया कि
1: इस बार खरीफ के सीजन में जिले में लगभग बुवाई पूर्ण हो चुकी है। जिले में इस वर्ष खरीफ के मौसम में कुल 4,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें 3,32,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सोयाबीन की बुवाई की गई है। इसके अलावा धान 40,000 हेक्टेयर, मक्का 32,000 हेक्टेयर एवं अन्य फसलें बोई गई हैं। इस बार अलनीनो के प्रभाव से बारिश कम होने से फसलों की बुवाई पर भी इसका असर देखने को मिला है।
0: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
2: अब हम रुख करते हैं शहडोल जिले की तरफ, जहां पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के साथ अब स्थानीय युवाओं के लिए होटल, रेस्तरां, कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने का अच्छा अवसर दिया जा रहा है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट।
3: शहडोल जिले के फ्रूट क्रॉप इंस्टीट्यूट का नया शैक्षणिक सत्र आज 3 अगस्त से शुरू हो गया। पहले चरण में 60 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को होटल, रेस्तरा, इवेंट मैनेजमेंट, रेलवे और एयरलाइन कैटरिंग सहित कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थापित और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यह संस्थान राष्ट्रीय होटल प्रबंधन व कैटरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान नोएडा से संबद्ध है। ऐसे में शहडोल व आसपास के जिलों के आदिवासी व अन्य युवाओं को हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए अपेक्षाकृत कम लागत में व्यावसायिक प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिल रहा है। संस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए 1.5 वर्ष का डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 30 सीटें हैं और कुल प्रशिक्षण शुल्क 29,250 रूपए है। वहीं 10वीं पास युवाओं के लिए 6 महीने का क्रॉटमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड एंड बेवरेज सर्विस संचालित होगा। इसमें भी 30 सीटें हैं और शुल्क 15,000 रूपए रखा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
2: हमारी अगली खबर है राजगढ़ से, जहां जिले की 14 ग्राम पंचायतों में बच्चों और युवाओं को तकनीकी दक्षता सिखाने के उद्देश्य से स्मार्टपुर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे राजगढ़ संवाददाता कमल खस।
4: ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों एवं युवाओं को डिजिटल शिक्षा, तकनीकी दक्षता और आधुनिक सिखाने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजगढ़ जिले की 14 ग्राम पंचायतों में स्मार्टपुर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर 5 लैपटॉप उपलब्ध कराकर बच्चों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा, डिजिटल साक्षरता एवं आधुनिक तरीके से जोड़ने का कार्य किया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर एक कम्युनिटी फैसिलिटेटर जो ग्राम पंचायत में ऑनलाइन से संबंधित समस्त कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेगा। स्मार्टपुर केंद्रों का संचालन जिले के जनपद पंचायत नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर में किया जाएगा। इनमें चयनित पंचायतों में यह सुविधा लागू की जाएगी। नरसिंहगढ़ विकास खंड के अंतर्गत बिहार जामुनिया जोर एवं पाडलिया बना, राजगढ़ विकास खंड के अंतर्गत महाबल, हिरणखेड़ा, फूलखेड़ी, फोंदिया, खिलचीपुर विकास खंड के अंतर्गत पखेड़ी, बावड़ी खेड़ा एवं दलूपुरा, जीरापुर विकास खंड के अंतर्गत कवालसी खेड़ा, राजपुरा, लखोनी आदि पंचायतें शामिल हैं। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर, गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि

गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

शाम के 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम के 7:21 पर आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम माटीरी बात। रात 8 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा, और रात 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम सुर्खियों में रिले किया जाएगा। और रात 8:30 पर आपको इंतजार रहेगा आकाशवाणी उज्जैन द्वारा प्रस्तुत फिल्म संगीत का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9 अनुप्रसारित होंगे। रात 9:15 से आप आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित उर्दू समाचार सुन सकेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा रात 9:30 पर, और रात 10 आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित होगी आपकी फरमाइश। इसके पश्चात भोपाल से ही अनुप्रसारित शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का आप आनंद ले सकेंगे 10:30 पर। तदुपरांत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार 11 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर अनुप्रसारित होंगे। रात्रि 11:10 पर आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, अब आपको कल यानी 4 अगस्त 2026 मंगलवार को प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 5:50 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वंदनवार। 6:35 पर विविध भारती मुंबई से ही अनुप्रसारित होगा श्री रामचरितमानस गान। सुबह 6:45 पर अनुप्रसारण होगा विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम संगीत सरिता का। सुबह 7 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी उज्जैन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार प्रभात सुबह 8 और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10 होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 11 के उपरांत आप विविध भारती मुंबई से ही अनुप्रसारित कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:09 हो चुके हैं और कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी,
2: फीस तो देखो
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन,
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
6: RBI कहता है
7: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान कल्याण वर्ष में समृद्ध प्रतिबद्ध है और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए प्रगतिशील है। इस दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
9: मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हर एक क्षेत्र के अंदर किसान कल्याण की जो बेहतर हो सकता हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हमने अपने इसी क्षेत्र के अंदर कोदो कुटकी को भी खरीद करके पहली बार MSP पे हमने दाम दिलाने का प्रयास किया और बोनस अलग दिया। गेहूं खरीदी के लिए भी 2585 का दाम था, उसपे 40 रूपए बोनस देके 2625 रूपया गेहूं अपनी सरकार ने खरीदा। धान का MSP भी लगातार बढ़ाते जा रहे।
8: मुख्यमंत्री ने कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण और संचयन को सुनिश्चित करने के लिए कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नहरों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के व्यापक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा भी संचालित की जा रही है। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा ने आज सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में और संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि आज कई महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की

0: संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया, जिसमें विपक्षी दलों का कोई भी सदस्य चर्चा में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ, विपक्ष ने इसमें भी भाग नहीं लिया। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और जब उन्हें मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीकी, डिजिटल सुविधाएं और हरित परिवहन के विजन के साथ 11 और 12 सितंबर को इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देश भर के नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलकर भविष्य की मोबिलिटी का रोडमैप तैयार करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। सावन माह का पहला सोमवार पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का शुरू हुआ सिलसिला जारी है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भ्रातृत्व सवारी के तहत आज पहली सवारी निकाली जा रही है। वहीं रायसेन जिले के ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, खंडवा और आगरमालवा सहित प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं देवास जिले के महाकालेश्वर, जटाशंकर और कर्णेश्वर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिवस कल 4 अगस्त को खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और स्वरांजलि का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया। भारतीय एथलीटों ने भारोत्तोलन के 11 भार वर्गों में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। खेल मंत्री ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये, रजत पदक जीतने वालों को 20 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को 10 लाख रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान किए। खेल मंत्री डॉ. मांडविया ने खिलाड़ियों से खेल के राजदूत बनने का आह्वान किया और उनसे स्कूलों तथा कॉलेजों का दौरा करने का भी आग्रह किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्ट्रीट वेंडर्स योजना का दायरा और असर बढ़ाने के लिए 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा चलाया जा रहा है। झाबुआ के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 5 अगस्त को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना में शामिल मादा बाघिन T27 का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे वन विहार भोपाल भेज दिया है। गुना के ग्राम उमरी में 200 दीदियों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीधे डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष में 12 अगस्त तक प्रवेश दिया जा रहा है। खंडवा के शासकीय ITI परिसर में 6 अगस्त को रोजगार, स्वरोजगार व अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को हराया। प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा सावन माह का पहला सोमवार और अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश
6: FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 7:21 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी री बात।

राम राम साहब, हूँ दिया उमट, कई हाल चाल है। चलो हाल चाल तो बढ़िया ही होएगा, मौसम भी बढ़िया हुई रही है, सुहावनो भी हुई रही है ने। आज तो सावन को पहलो सोमवार है, जैसा मोर नाचे कोयल बोले ने, साथ ही साथ चारों तरफ हरियाली रहे, पड़ तो पानी ने एक आड़ी ठंडो मौसम ने, साथ ही सावन को सोमवार ने उज्जैन उज्जैन मेरो बाबा महाकाल की सवारी भी निकले हैं। आज ग्राम सभा में मालवी गीतारी गूंज कार्यक्रम में आप सभी लोगा और को स्वागत है। चलो ये सब बात तो चलती रहेगी कि आज सावन को सोमवार है, बाबा महाकाल का भजन भी सुनांगा, भोले भंडारी की घनी सारी बाता भी करांगा, पर पहला अपन सुनांगा मालवी समाचार।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में किसान उनकी आय बढ़ावा और उनके समृद्ध बनावा के लिए प्रतिबद्ध है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह विजयी घोषित हुआ है। सावन माह को पहलो सोमवार पूरा प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह का साथ मनायो जा रही है। बलराम कृषि महोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से बैतूल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के संबोधित करियो है। मुख्यमंत्री ने बतायो कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष से किसान की आय बढ़ावा और उनके समृद्ध बनावा के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। परिवहन समिट। सुरक्षित सड़कें, स्मार्ट तकनीक, डिजिटल सुविधा होन और हरित परिवहन का विजन का साथ 11 और 12 सितंबर के इंदौर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 को आयोजन होएगो। अनि समिट में देश भर का नीति निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, उद्योग जगत और निवेशक मिलके भविष्य की मोबिलिटी को रोडमैप तैयार करेगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव मतगणना। प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट में शामिल दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह विजयी घोषित हुआ है। उन्हें उनका निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के 6,000 से ज्यादा मत का अंतर से हरायो। दतिया विधानसभा उपचुनाव का लिए 30 जुलाई के मतदान हुए थो। लोकसभा विधेयक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंकर होन के बही खाता होन को साक्ष्य विधेयक 2026 पेश करियो। इको उद्देश्य बैंकर होन का बही खाता से संबंधित साक्ष्य का लिए कानून बनानो और एक समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्य प्रणाली होन का अनुरूप बनानो है। वही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद का समक्ष प्रस्तुत करिया। कॉमनवेल्थ गेम्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि भारत का खिलाड़ी होन ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना अद्भुत प्रदर्शन से संपूर्ण राष्ट्र को मस्तक गर्व से ऊंचो कर दियो है। भारतीय खिलाड़ी होन ने 39 पदक जीतिया जेमें 13 स्वर्ण शामिल है और गौरवशाली उपलब्धि हमारा खिलाड़ी होन के समर्पण, अनुशासन और अथक परिश्रम को परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी पदक विजेता होन, कोच और भारतीय दल का अन्य सभी सदस्य होन के हार्दिक बधाई दी है। सावन सोमवार। सावन माह को पहलो सोमवार पूरा प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और उत्साह का साथ मनायो जा रही है। सुबह से ही प्रमुख शिवालय होन में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का सिलसिला शुरू हुई गयो है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी का तहत आज पहली सवारी निकलेगी। वहीं रायसेन जिला का ऐतिहासिक भोजपुर शिवधाम, नर्मदापुरम, जबलपुर, देवास, खंडवा और आगर मालवा सहित प्रदेश भर का शिवालय होन में श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहा है। पारस जैन निधन। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पारस जैन को आज सुबह 77 वर्ष की उम्र में निधन हुई गयो है। वे पिछला कई दिन से अस्वस्थ था। पारस जैन कई बार उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होया। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग उनकी जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 2005 से 2013 का बीच में राज्य मंत्री का रूप में वन, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग उनसे जुड़े रहा। दिसंबर 2013 में उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गयो। साल 2016 में मंत्रिमंडल विस्तार का दौरान उनके ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमियो नहीं है। अगला दो दिन तक अधिकांश जिला में कई हल्की तो कई मध्यम बारिश होवा की संभावना है। हालांकि 4 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा की संभावना है। एको प्रभाव से 5 अगस्त से प्रदेश का पूर्वी और उत्तरी जिला में एक बार फिर भारी बारिश को दौर शुरू हुई सके है। झाबुआ जिला में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तैयारी होने तेजी से हुई की है। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने समीक्षा बैठक में बताया कि अभियान 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक संचालित करो जाएगो। अभियान का पहला दिन 7 अगस्त को पेटलावद विकासखंड में क्षेत्रीय भ्रमण और जन विश्वास शिविर आयोजित होगा। गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिवस कल 4 अगस्त के खंडवा में श्रद्धा और उल्लास का साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में किशोर नाइट को आयोजन करियो जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार का लोकप्रिय गीत उनकी प्रस्तुति देगा। मालवी समाचार समाप्त।

तो आज सावन को पहलो सोमवार है और उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकले हैं, जिसमें उनका भक्त घनी बड़ी संख्या में शामिल हुई है। देवों के देव महादेव के समर्पित पावन मास सावन को पहलो सोमवार हम सभी लोग आहोर का लिए श्रद्धा आस्था और भक्ति को विशेष पर्व रहे। अन्य साल सावन को पहलो सोमवार 3 अगस्त मने की आज का दिन आयो है। सावन को महीनों भगवान शिव के अत्यंत प्रिय मानियो गयो है। मान्यता है कि अने पूरा महीना में श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण, ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करवा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि को आगमन होइए। अनि मान्यता का साथ ही घना सारा भक्त और सारा ही भक्त भगवान पे रुद्राभिषेक, जलाभिषेक ऐसा सब करे। जब बात उज्जैन की हो तो सावन को महत्व और भी बढ़ी जाइए, क्योंकि यह पावन नगरी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर को विशेष स्थान है। सावन को पहले सोमवार पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का दर्शन और जलाभिषेक के लिए उज्जैन पहुँचे। प्रातःकाल होवा वाली भस्म आरती, वैदिक मंत्रोच्चार, शिव भक्ति से गूंजता मंदिर और श्रद्धालु के उत्साह पूरा शहर का आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी दे। सावन को सोमवार में निकलवा वाली महाकाल की शाही सवारी उज्जैन की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें बाबा महाकाल नगर भ्रमण करके भक्तों के दर्शन दे है। अनि सावन का पहला सोमवार पे हम भी भगवान शिव से यही प्रार्थना करा कि वी सभी का जीवन में सुख समृद्धि

स्वास्थ्य ने समृद्धि को आशीर्वाद प्रदान करे। अभी सुना अपन योग गीत, क्योंकि आज मालवी गीता री गूंज है। ने मैंने आपके बतायो कि सावन को पहलो सोमवार भी है, तो आज भोले बाबा का गीत भी चलेगा। सावन की फुहार में हर मन शिवमय हो जाए, हर हर महादेव की गूंज से जीवन धन्य हो जाए। भोले बाबा की कृपा रहे सब पर हर बार। अब सुनिए शिव भक्ति से सरोवर में एक मधुर गीत।

सावन को महीनों धरती पे हरियाली, उमंग और भक्ति लेके आए हैं। आज सावन को पहलो सोमवार है, यानी पावन अवसर पे हम बात करेंगे भगवान शिव की आराधना, संस्कृत भाषा की महिमा और हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत की। मालवा की धरती पे सावन को महीना आता ही मंदिर होर में घंटी होर की गूंज सुनाई देवे लगे। गांव-गांव में कांवड़ यात्रा, शिव भजन और लोकगीत होर को वातावरण बनी जाए है। संस्कृत के देववाणी भी बोली जाए, हमारा वेद, उपनिषद, गीता और अनेक प्राचीन ग्रंथ अन्य ही भाषा में रचा गया है। या केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान, संस्कृति और जीवन दर्शन के आधारशिला है। आज का टाइम में भी संस्कृत को महत्व कम नहीं होयो है। योग, आयुर्वेद, दर्शन और भारतीय संस्कृति के समझवा का लिए संस्कृत को ज्ञान घणो जरूरी रहे। अनि सावन में हम केवल पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा को भी संकल्प ला, एक पौधो लगाओ, जल बचाओ, पर्यावरण के हरो भरो बनाओ। सावन आयो, धरती हरियाली ओढ़ी, भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसे, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनी धरती ने हरी भरी बनाओ। एका साथ ही हम सुनांगा एक और मालवी लोकगीत, फिर थोड़ी बहुत और भी जानकारी आपके मिलेगा।

0: चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और दर्शन का अनेक ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में ही रचित थे। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि भारत की हजारों वर्ष की ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की अमूल धरोहर है। संस्कृत को संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण है। भोला बाबा कैलाश बैठा गंगा जटा में धार, सावन आयो हरियालो बोलो बम बम बारंबार। अबे सुनो पूजा जी, कसा कई फसल प्राकृतिक खेती करके उगाई है और स्वस्थ पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण सब्जी और को उत्पादन करे हैं। ओका बाद थोड़ी बहुत और जानकारी हूँ आपके दुआ।
1: आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच में है कृषि सखी पूजा जी, जो अपना प्राकृतिक खेती कर रही है जिससे सब्जियां उगा रही है तथा व्यवसाय भी कर रही है। तो हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे कि इन्होंने इस प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करी, किस तरह से इस खेती को अपनाया और किस तरह से वहाँ आज रोजगार प्राप्त कर रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका परिचय, ताकि हमारे किसानों को भी पता चले कि कृषि सखी पूजा जी किस तरह से कहाँ से कार्य कर रही है।
2: मेरा नाम कृषि सखी पूजा राजपूत, मैं गांव नसलिया देवती से हूँ, जिला उज्जैन, तहसील मेदपुर।
1: पूजा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने प्राकृतिक खेती अपनाने का निर्णय कैसे लिया।
2: प्राकृतिक खेती के ऐसे निर्णय लिया, मेरे पति पहले तेली कैसे उनने भी शिक्षा ली और हमारे जो बीटीएम सर है, ये आत्मा के सर बीटीएम सर दयाराम चंदना 8-15 दिन हमारे घर में आते रहते हैं और वो भी शिक्षा देते रहते हैं प्राकृतिक खेती की।
1: जी, तो प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर दिखा आपको?
2: रासायनिक खेती में बीमारी फैलती है और प्राकृतिक खेती में हमारी सुरक्षा और कम लागत उत्पादन ज्यादा रहता है।
1: जी, आपने अपने खेत में कौन कौन सी सब्जियां उगाई है अभी तक, जिनका आप व्यवसाय कर रहे हैं, जिनसे आप रोजगार प्राप्त कर रहे हैं?
2: अभी तक हमने सब्जी करेले, गिलची, टमाटर, बैंगन, चवला ये लगाए हैं और सोयाबीन, उसने और भी लगाई है सोयाबीन के बीज इसमें।
1: तो इससे क्या फायदे दिखे आपको कि आप जब रासायनिक खेती कर रहे थे और अभी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उत्पादन में, सब्जियों की गुणवत्ता में क्या फायदे दिखे आपको या क्या परिवर्तन दिखे हम कह सकते हैं?
2: रासायनिक में ये परिवर्तन दिखा, जैसे कि पहले हमारी धरती माँ बहुत कठोर हो रही थी, मतलब इसमें रासायनिक खेती में, प्राकृतिक खेती में बहुत दर दरा जैसे मुलायम जैसी हो गई है, इसमें कम लागत लगती है, उत्पादन ज्यादा रहता है इससे, जैसे कि इसमें बीमारी भी नहीं रहती है, हम घर के ही दवाई बनाते हैं घर में ही।
1: आप घर पे किस तरह दवाई बनाते हैं, थोड़ा सा आप हमारे किसानों तक यहाँ बात पहुँचाना चाहेंगे?
2: खाद के उपयोग में जीवामृत, वर्मी कम्पोस्ट डालते हैं और कीटनाशक जैसे कीड़े मकोड़े डालने के लिए नीमा अस्त्र, अग्नि अस्त्र, 10 पत्ती काढ़ा, 5 पत्ती अर्थ काढ़ा बनाते हैं।
1: जी, तो आपकी उपज की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्राकृतिक खेती का प्रभाव पड़ा जो आपने हमें बताया। आपने सब्जियों का विपणन कैसे करें, सब्जियों का मार्केटिंग कैसे करें, आपको क्या क्या समस्याएं सब्जियों की मार्केटिंग करने में देखने में आता है कि प्राकृतिक खेती में जो सब्जियां उगती है उनका शेप थोड़ा अलग होता है और जो खेती हम जो करते हैं बाकी उसमें सब्जियों का शेप क्लियर दिखता है, तो आपको इसमें क्या क्या समस्याएं आई?
2: समस्या जैसे कि अभी समय गांव में दिख जाती है, जैसे कि ले जाना, रोज ले जाने में ये मतलब दिक्कत आती है, जैसे रोज तोड़ना छूटे जल्दी तोड़ना है और ले जाने में जैसे कि कान से दिक्कत, पर ये रासायनिक में दिक्कत है, वो प्राकृतिक में सब्जी में सवाल मतलब बहुत है, वो तो घर बैठे आधे तो आ ही जाते हैं और ऑर्डर भी दे देते है कि आपके यहाँ की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो जहाँ वो ऑर्डर जाता है वहाँ पहुँचा भी देते हैं।
1: जी जी, तो आप सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं अपनी सब्जियां या फिर मंडी में ले जाते हैं?
2: अभी तक तो मंडी तक दही नहीं है, क्योंकि सवाल देख के अभी जैसे कि घोसले भी हमको कॉल कर देते कि हमारे पास आ जाओ, गांव वाले भी घर बैठे आ जाते हैं अभी तक तो।
1: जी, इस खेती से आपको और आपके परिवार को आर्थिक रूप से क्या लाभ मिला?
2: परिवार यहाँ इसलिए साथ देता है कि इसमें कम लागत उत्पादन ज्यादा रहता है और इसमें बस मेहनत लगती है, पैसे तो लगते ही, परिवार वालों ने भी साथ दिया।
1: जी, आपका पूरा परिवार मिलकर प्राकृतिक खेती करता है और इससे आपको किसी भी प्रकार की ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा?
2: नहीं, और ना हम ना बाहर के मतलब मजदूर भी नहीं लगाते, हम घर के ही 4 सदस्य वो हम 4 ही करते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया। खेती के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और ये चुनौतियां जैसे कि आपने बताई है कुछ चुनौतियां, लेकिन आपको कभी ऐसा लगा कि आप प्राकृतिक खेती के बजाय जो खेती से करना ज्यादा फायदेमंद होता है, ऐसा कभी आया आपके ख्याल?
2: नहीं नहीं नहीं, वो तो मतलब वो तो हमारी धरती में इतने बंजर जो बीमारी खेल रही है, जैसे कि कैंसर है, हार्ट अटैक है, कि ये बीमारी उससे ही रासायनिक खेती से ही हो रही है। अगर लोग समझ जाए कि हम ये प्राकृतिक खेती अपना ले तो ये बीमारी नहीं होगी।
1: इसके साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस सरकार की योजनाओं का लाभ मिले?
2: सरकारी योजना में कि जैसे कि अभी मैं कृषि सखी हूँ
1: जी,
2: से मुझे ये फायदा हुआ है कि घर वालों जैसे कि महिला बहुत कम मतलब आगे बढ़ने की सोचते कि आप योजना अगर पैसे दे रही है योजना, इससे क्या कि वो कहे कि काम भी अपना हो जाए और अपने मतलब महिला आगे भी बढ़ सके।
1: तो ये कृषि सखी कोई योजना है या आपको नाम दिया गया है कृषि सखी?
2: नहीं, योजना जैसे कि सरकार ने कृषि सखी को महिला को मतलब आगे बढ़ाए के पुरुष ही नहीं महिला भी कुछ आगे कर सकती है।
1: जी, तो ये सरकार की एक योजना है कृषि सखी।
2: हाँ,
1: जिसके निमित्त आप कार्य कर रही हैं।
2: हाँ
1: जी, इसमें आप महिलाओं के लिए खेती और स्वरोजगार के क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगी? आपका
2: महिला को मैं यह संदेश थी कि अपने घर को काम को निपट कर खेत में भी ध्यान देना चाहिए और प्राकृतिक खेती करना चाहिए। ऐसे ही कि अपने काम इतना मोबाइल में वैसे इस मोबाइल अगर छूट जाएगा और खेती के बारे में सोचेंगे तो ये अच्छा रहेगा। और जैसे कि अपने बच्चों का जो अपने जहर खिला रहे हैं बाहर से, अपने जो सब्जेक्ट जहर ला रहे हैं, वो अपने थोड़ी थोड़ी अगर सब्जी अपने लगा ली और खवा दी तो अपने परिवार भी सुरक्षित रहेगा, अपने बच्चे सुरक्षित रहेंगे।
1: जी, आप इसके साथ ही जैसे आप एक महिला होकर और एक गृहिणी होकर खेती में भी अपना समय दे रही है, तो इसके साथ आप आपके युवा यदि खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी?
2: मैं यहाँ सलाह दूंगी कि आप जैसे कि कोई बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, नौकरी के बारे में सोच रहा है, तो वो जैसे कि पहले अपने जो अगर खेती है जैसे कि कोई मतलब तेजी या फिर दूसरे को दे दी, उस नौकरी में जितना अपने खेती में मिलता है इतना नौकरी में नहीं मिलता है। अगर आप ठीक तरह से खेती करोगे तो आप नौकरी से ज्यादा धरती मामले ही मिलेगा, पर प्राकृतिक खेती करोगे तो और अच्छा रहेगा।
1: मेरा एक और प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जैसे अभी जो चल रहा है आप खेती कर रही है, सब्जियों की खेती कर रही है, लेकिन आपकी भविष्य में और क्या क्या योजनाएं हैं?
2: जैसे कि मैंने कृषि सखी बनी हूँ
1: जी,
2: उससे भी मुझे बहुत मतलब उत्साह बढ़ गया। हमारी सविता मैम जो है उन्हें बहुत अच्छे तरह है, उन्हें भी मतलब हमने महिला को बहुत उत्साह दिया कि हमको खेती प्राकृतिक खेती करनी चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा, और जो आपने बताया है वहाँ हमारे किसानों तक पहुँचेगा जिससे और भी किसान इसका फायदा उठा पाएंगे, और साथ ही साथ जो आपने कृषि सखी योजना के बारे में बताया है मुझे बिल्कुल निश्चित है कि यह योजना बहुत सारी महिलाओं को रोजगार देने में मदद करेगी।
0: तो आपने कृषि सखी पूजा जी के सुनियो कि किस तरह कहीं भी अपना घर का काम से फ्री होके फसल सब्जी का ओर ध्यान दे रही है, प्राकृतिक तरीका से सब्जी उगाई रही है बिना कई दवाई का यूज करया के, और एक साथ ही आज बात करा आज है विश्व तरबूज दिवस। हर साल 3 अगस्त के मनायो जाए, एक उद्देश्य केवल अन्य स्वादिष्ट फल को उत्सव मनानो ही नहीं है बल्कि एका पोषण स्वास्थ्य लाभ खेती और गर्मी का मौसम में एका महत्व का प्रति लोग हो के जागरूक करनो भी है। विश्व स्तर पर एको महत्व स्वास्थ्य जागरूकता, तरबूज में लगभग 92% पानी हो जो शरीर के हाइड्रेट रखवा में मदद करे। पोषण का स्रोत अगर देखा तो इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और लाइकोपीन जैसा पोषक तत्व पाया जाए जो प्रतिरक्षा, त्वचा और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। किसान होर को सम्मान, तरबूज की खेती करवा वाला किसान होर के योगदान को भी यो दिन रेखांकित करे हैं, और गर्मी में राहत भी मिले। तरबूज गर्मी में लू का मौसम में शरीर के ठंडक और ताजगी प्रदान करे। खाद्य संस्कृति को उत्सव कई देश होर में अन्य अवसर पे तरबूज खावा की प्रतियोगिता, कृषि मेला और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करया जाए है। भारत विश्व को प्रमुख तरबूज उत्पादक देश होर में शामिल है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्य होर में इको व्यापक खेती हुई है। यो फल किसान की आय बढ़ावा का साथ साथ लोग होर के सस्तो पौष्टिक और ताजगी देवा वालों आहार उपलब्ध कराए है। अभी टेम भी हुई क्यों है, पर जाते जाते एक और गीत ने फिर थोड़ी सी बातचीत ने बाद में फिर एनिस टेम पे काल भी 7:21 से 8 बजे तक। तो सुनो पहला यो गीत।

या विशेष फलदायी हो। सावन हमारी प्रकृति से जुड़वा को संदेश भी दे है। अन्य समय में वर्षा में धरती हरी भरी हुई जाए है, नदियाँ और तालाब भर जाए है और साथ ही साथ जीवन में नई ऊर्जा को संचार हो है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और परमात्मा के एक दूसरे का पूरक माना गया है। जैसे सावन में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व है। भगवान शिव त्याग, तप, करुणा, समानता और संतुलन का प्रतीक है। उनका स्वरूप में यहाँ सीख मिले है कि जीवन में विषम परिस्थितियों को सामनो भी धैर्य और विवेक से करना चाहिए। मान्यता है कि समुद्र मंथन का समय विश्वान और उनके लोक कल्याण को संदेश दियो, जो भारतीय संस्कृति के सर्वे भवन्तु सुखिना का आदर्श के दर्शाए है। सावन को सोमवार कांवड़ यात्रा, शिव मंदिर में होवा वाला भजन कीर्तन और सामूहिक पूजा भारतीय समाज में एकता, सहयोग, सांस्कृतिक परंपरा के मजबूत करे है या भी मान्यता मानी जाए। यो पर्व खाली धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होने के भी सशक्त बनाए हैं। और एक साथ ही हम बात करा कि सावन में व्रत भी होई है, घना सारा फलहार भी होई है, पूजन अर्चना भी होई है और पूजन अर्चना का साथ साथ भगवान शिव के घना सारा चीज भी चढ़े है। एक साथ अगर हम बात करा कि जो सावन को महीना को महत्व अपने आप में जैसे भी बढ़ जाए, क्योंकि एमे मौसम घणो ही सुहावनो रहे और उज्जैन में सावन और सावन का समय पे आप उज्जैन में रो एक ही बात ही अलग रहे। अलग ही सुहावनो मौसम, कभी बारिश तो कभी हल्की हल्की सी धूप, इका साथ ही सावन का महीना में सवारी का मजा भी श्रद्धालुओं ले है। सवारी में भी श्रद्धालुओं शामिल हो है और घना सारा दान पुण्य, घना सारा लाभ कमाए है। यह बात हमने कर ली सावन की, पर अब हम बात करा जो हमने सुनी थी पूजा जी की, कि किस तरह कई भी प्राकृतिक खेती करके फसल उगाए है, व्यवसाय भी करे है और घर का ही सदस्य मिली के भी घना सारा अलग अलग फसल के अलग अलग तरीका से उगावा की कोशिश करी रही है। उनके सरकार की योजना से कृषि सखी नाम भी मिलियो है और कृषि सखी खुद अपने आप में एक योजना है जिसका अंतर्गत भी काम भी करी रही है। इस तरह घर में महिला होन अपना काम से फुर्सत होई के और सारो काम निपटाई के थोड़ी घनी खेती में भी आगे बढ़ी सके है, क्योंकि व्यवसाय खाली नौकरी करवा से ही नहीं चल सके है। खाली रोजगार हम नौकरी करके ही नहीं मिल सके, लेकिन जब आप गांव में रहो और आप एक किसान हो, आपका घर में खेती है, तो महिला हो भी बड़ी संख्या में उमें काम कर सके है। उमें अलग अलग तरीका का अलग अलग तरीका से फसल उगाई सके है, अलग अलग तरीका से सब्जियों उगाई सके है। छोटा स्तर से जब हम चालू करा तो एक बड़ा स्तर तक घनी सारी उपलब्धि होन हासिल कर सके हैं। एक छोटा स्तर से भी एक बड़ा स्तर पे भारत रत्न तक भी महिला होन जाई रही है और साथ ही साथ किसान होन भी वहां तक पहुंच रहा है। तो एका साथ ही ग्राम सभा में टाइम भी हुई गयो है, 7:58 हुआ पे है और आज हमारी ग्राम सभा में हमने सावन का पहला सोमवार की भी बात करी, घनी सारी बात भी करी। एका साथ ही फिर कल अनिस टाइम पे 7:21 से 8 तक मैं नहीं तो हमारा साथी और आएगा, तो तैयार रही जो चाय लेके पकौड़ा लेके, तो राम राम साहब।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटीरी बात। रात के 8 बजने को हैं और कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम संसद समीक्षा का अनुप्रसारण किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकाट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC, ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
3: जी राजा रमन, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आकाशवाणी में।
3: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथे नंबर पर अपना कैंपेन खत्म किया है। 122 खिलाड़ी गए थे और 39 मेडल लेकर घर लौटे हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कैसे रेट करेंगे?
4: उम्मीद के अनुसार ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। गेम से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 30 मेडल का शायद टारगेट लगा था भारतीय टीम के लिए, लेकिन 39 मेडल से वापस आना, ये दिस इज अबाउट माय एक्सपेक्टेशन। और मैं सराहना करूंगा पूरी टीम की, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम हो या फिर वेटलिफ्टिंग हो या फिर बॉक्सिंग हो या जूडो हो, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और ये देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन।
3: राजा, आपने कहा कि खेलों से पहले आप 30 का टारगेट देते, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2002 से अब तक ज्यादातर 50 से ज्यादा मेडल्स लाए। बर्मिंघम की बात करें तो 61 मेडल थे। तो जब हम खेलों की बात करते हैं, ये सब आंकड़ों की बातें होती हैं और स्टेटिस्टिक्स के बाद, जैसे मैंने भी कहा कि 2002 के बाद ये पहली बार है कि 50 से कम मेडल लेकर आए हैं, पर इसके साथ ये बात भी है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पिछला इतिहास है या हाल का भी जो रिसेंट हिस्ट्री है उसको देखें, तो ये पहली बार है कि जो खेल है काफी कम हो गए। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, ये ऐसे खेल हैं जहां पारंपरिक तौर पर भारत जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, और ये खेल इस बार नहीं थे। तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उनको सिर्फ नंबरों से, आंकड़ों से आंकना सही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में?
4: नहीं, ये नंबर तो हमेशा नंबर का खेल है, और मेडल तालिका में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मेडल कम हो गए क्योंकि खेल कम हो गए थे। इधर शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल में हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेडल मिलते थे, लेकिन ऐसा खेल का ना होना दुख वाली बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये गेम्स विक्टोरिया में होने थे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर उन्होंने मना कर दिया था और लास्ट मिनट में ग्लासगो आगे आए और फिर वो आयोजन किए हैं, तो तारीफ के काबिल है ग्लासगो। लेकिन क्योंकि सिर्फ 10 डिसिप्लिन थे यहाँ पर जहाँ हम हिस्सा लिए थे, ये मेडल नंबर कम दिखेंगे लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मेडल कम हुए, कनाडा के मेडल कम हुए, इंग्लैंड के मेडल कम हुए, हमारे भी कम हुए। और मैं नहीं, इसको खराब प्रदर्शन नहीं मानूंगा। अगर आप 60 और 70 मेडल देखते हैं और फिर वहां से 39 देखेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे खेल कम थे, फ्यूअर डिसिप्लिन, इसीलिए शायद नंबर्स कम है।
3: जी, अब हम अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग भारत के कैंपेन का स्टार रहा। हमने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड भी हैं। ये किसी भी देश द्वारा किसी एक कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल है। तो ये कामयाबी बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बॉक्सिंग की बढ़ती ताकत को दिखाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कौन से वो बॉक्सर्स हैं जो आपको लगता है जो इसमें उभर कर आए हैं इन गेम्स में?
4: टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके का कंपटीशन का स्तर रहा उस हिसाब से भारतीय टीम ने अपने 10 मेडल लाए वहां पे, 7 गोल्ड मेडल और फिर 3 सिल्वर मेडल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि एशियन गेम्स जो महीने दो महीने में होना है, वहां पे अगर ऐसा प्रदर्शन होता तो बहुत ज्यादा उत्साह का जगह बन जाता है। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग और फिर वेट लिफ्टिंग, इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए शायद आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि 10 मेडल खराब मेडल है, 10 बहुत बेहतरीन मेडल है, जो कंपटीशन है उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं। ये हमारी गलती नहीं है कि कंपटीशन कमजोर रहा
3: जी, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि जी बॉक्सिंग में हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है इन गेम्स में।
4: हकीकत तो यही है, सच ये है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा और बाउट जीतने पड़ेंगे, और वो जीत के आए हैं।

0: तो दे डिजर्व प्रेस, तारीफ तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि कुछ खेल ऐसे हैं जहां पे एशियाई खेल में हमको मेडल्स कम मिलते हैं। वेटलिफ्टिंग में वहां पे गोल्ड आ गया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन आप देखेंगे तो 190 में गोल्ड मेडल लेकर आई है, सिल्वर मेडल जिसके पास था उनसे 20 किलो ज्यादा उठाई है, तो दिखाता है कि कॉम्पिटिशन कमजोर ही रहा है, लेकिन आपको मैदान में फिर भी उतरना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मेडल्स बॉक्सिंग में और वेटलिफ्टिंग में आए मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा ही प्रदर्शन एशियन गेम में जब करेंगे तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी।
1: जी, आप क्योंकि वेटलिफ्टिंग की बात कर रहे हो, जैसे भी आपने कहा कि जब वेटलिफ्टिंग की बात हो और मीराबाई चानू की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारत की सबसे महान एथलीट्स में क्यों शुमार हैं, और उन्होंने इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हैट्रिक है टाइटल्स की वो पूरी की है। तो इसके अलावा उनकी तो ऑफकोर्स हमने भी बात की, पर बाकी और कौन से वो वेटलिफ्टर्स हैं जिन्होंने इन खेलों में, ग्लासगो खेलों में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है वेटलिफ्टिंग की बात करें?
0: विद्या रानी देवी का प्रदर्शन सही रहा है मुझे लगता है, मुत्तुपांडी राजा जो मेन सेक्शन में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छे लिफ्टर्स हैं, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड अभी शायद नहीं आया इनका, लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है कईयों ने, अगर वहां पे हमें इतने सारे मेडल्स मिलते हैं, 8 मेडल लेकर आए हैं, अफसोस वाली बात है कि 1 या 2 हम यहाँ पे घर पे रखना पड़ा उनको, हमारे लिफ्टर्स जा नहीं पाए, अफसोस वाली बात है, लेकिन 8 मेडल के साथ वापस आना कॉमनवेल्थ गेम्स से ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन। जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके सामने एक चैलेंज है कि जो खिलाड़ी वहां गए उनको और उठाए उनका स्टैंडर्ड और फिर एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर दिखाए।
1: एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत की मेडल्स की गिनती में कई बड़े अचीवमेंट्स हमको मिले हैं, बेशक ऑफकोर्स स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने तो जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत कर जो देश को उन पर भरोसा था एक बार उसको फिर से पूरा किया है, पर उनके अलावा अगर हम बात करें कई ऐसी अचीवमेंट्स है, कई ऐसी सफलताएं मिली जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो मैं आपसे वो सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि एथलेटिक्स में वो कौन सी ऐसी सफलताएं थी जो इन खेलों में उभर कर आई है जिनके बारे में जैसे मैंने भी कहा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मेडल्स मिलेंगे।
0: सच बताऊं तो मेरी उम्मीद सिर्फ 3 मेडल की थी, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में और फिर तेजस्विन शंकर डिकैथलॉन में, ये 3 मेडल की उम्मीद थी, तीनों मेडल लाए वहां से। बट मुझे लगता है कि तेजस्विन शंकर वाला डिकैथलॉन मेडल बहुत ही अहम मेडल है, क्योंकि 4 दिन पहले ही वो हाई जंप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, चोट लग गया था उन्हें, उनके नी में प्रॉब्लम था और फिर वो खेल नहीं पाए थे हाई जंप, लेकिन वहां से आना और फिर डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना, और पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी डिकैथलॉन में मेडल जीत रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। और फिर सर्वेश कुशारे हाई जंप में, और कैसे हम बोले गुलवीर सिंह को,
1: बिल्कुल,
0: जिनके पास 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज, 2 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने एथलेटिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कहे तो ही इज द फर्स्ट एथलीट जो जिनको 2 मेडल मिले। और फिर सीमा जो पीएचडी की स्टूडेंट भी है और डिस्कस थ्रो चैंपियन भी रही है, तो उनका ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। 10 मेडल ट्रैक एंड फील्ड से आना, एथलेटिक्स से आना, और फिर 6 मेडल पैरा एथलीट्स के पास से आना, 16 मेडल एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किए, इट इज मैसिव। और मुझे लगता है कि वेटलिफ्टिंग और फिर बॉक्सिंग से ज्यादा अगर मैं इम्प्रेस होता हूँ तो एथलेटिक्स से होता हूँ।
1: आपने पैरा एथलीट्स की बात की, तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारत के पैरा एथलीट्स हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, इवेंट्स में भारत का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं, और ग्लासगो में भी उन्होंने देश को निराश नहीं किया, तो उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओवरऑल भारत में पैरा स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं, और अभी भी कौन से वो खेल हैं पैरा स्पोर्ट्स में जिसमें है तो भारत की काफी अच्छी सफलता मिली और हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं?
0: बहुत सारे खेल हैं, पैरा स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, हालांकि हम स्विमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे मेडल्स कम है वहाँ और मेडल्स आ सकते हैं, पैरा एथलेटिक्स में हम लगातार अच्छा करते आए हैं, पैरा साइकिलिंग में बेहतरी हो सकती है, तो बहुत सारे खेल है, व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ है उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन एक मुहिम चला है पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करने का जो भारत सरकार करता है, नॉट ओनली फॉर पैरा स्पोर्ट, एबल बॉडीड स्पोर्ट के लिए भी। अगर आज ओलंपिक स्पोर्ट अच्छे स्तर पर है, भारतीय सरकार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जितना पैसा वो लगाते हैं मार्केट से उतना बनता नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं लगा पाते, तो भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट, और मुझे लगता है कि उसी के नतीजे, उसी के अंजाम हमको देखने मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मेडल्स आए हैं। और सबको ये बताना भी होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है पैरा एथलेटिक का, चाहे वो जैवलिन हो या फिर हाई जंप हो जहां हम लगातार मेडल जीते हैं, वैसे इवेंट नहीं थे इधर ग्लासगो में, विमेन शॉटपुट में शर्मा शर्मिला मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई. ऐसे मेडल्स हमारे लिए संकेत देते हैं कि पैरा स्पोर्ट्स सही दिशा में चल रहे हैं.
1: एक और स्पोर्ट्स जहां से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है वो है जूडो. जूडो में ऑफकोर्स एक बार फिर हमारे जूडो का जो है उन्होंने इतिहास रचा है. हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट वो दोनों बने, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीता और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है जूडो जैसे एक खेल में, जो एक गैर पारंपरिक खेल हम कहेंगे भारत की दृष्टि से, कि इस तरह मेडल्स जीतना कितना महत्वपूर्ण है. पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि अगर हम ओवरऑल बात करें देश की, जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो हॉकी, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों से बाहर निकलकर इन गैर पारंपरिक खेलों में ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें.
0: जूडो के 4 मेडल बहुत अहम है, क्योंकि आप देखें तो जूडो में हमारे मेडल्स एशियन गेम्स में भी कम मिलते हैं, उससे एक लेवल नीचे है कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन. वहां पे गोल्ड लाना पहली बार आ रहा था गोल्ड भारत को, विच इज गुड, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है जूडो को लेके. और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम बहुत पैसा कोई ऐसे खेल में लगाते हैं जहाँ पे ज्यादा मेडल्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में 40 इवेंट है और फिर 120 मेडल तक आपको एथलेटिक्स में आप जीत सकते हैं, कोई भी देश जीत सकता है. वैसे ही जूडो में आपके अगर 10 इवेंट मेन के और 10 इवेंट विमेन के हैं तो 20 मेडल आप जीत सकते हैं. तो ऐसे खेल को बढ़ावा देना शायद एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा भारतीय खेल में, कि जूडो को आगे बढ़ाया गया. और फिर कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं जो जूडो को अपनाए हैं और फिर वहां पे बेलारी में ट्रेनिंग करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. भोपाल में एक बेहतरीन एकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से भी बहुत बड़ा योगदान रहा.
1: आपकी नजर में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से वो ऐसे खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, जिसको हम एक कहते हैं ना ब्रेकआउट स्टार्स, जिन पर सबकी नजर आने वाले भविष्य पर रहेगी?
0: डिस्कस थ्रो सीमा जरूर मैं कहूंगा कि शी विल बी अ सुपरस्टार. कुछ साल पहले वो माँ बनी, कुछ साल पहले वो खेलना भी बंद कर दी थी और फिर वहां से आना और अपना पढ़ाई करते हुए खेलना और फिर राष्ट्रमंडल खेल में मेडल जीतना और फिर गुलवीर का आगे बढ़ना, वर्ल्ड क्लास रेसिंग करके 2 मेडल हासिल करना, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन. लेकिन अगर आप मुझसे एक मेडल की बात करें तो वो तेजस्विन शंकर वाला मेडल होगा, क्योंकि मुश्किल काम होता है. हमारी सबकी नजर 100 मीटर धावक पे हो जाती है या जैवलिन थ्रोअर पे होती है. ये खेलते हैं 10 अलग अलग इवेंट और हमें पता भी नहीं चलता कि लीड कौन है, कौन सेकंड चल रहा है, कौन थर्ड चल रहा है. सबसे बड़ा मेडल मैं मानता हूँ.
1: पूरे कैंपेन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इस ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की जो पारंपरिक ताकतें थी उससे आगे बढ़कर जो हमने गहराई दिखाई है, जहां सिर्फ कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी टीम्स ने कई अन्य खेलों में जो मेडल जीते हैं, इससे देश में बढ़ते हुए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: पॉजिटिविटी फैलता है. हम सबको पता था कि बॉक्सिंग में कुछ अच्छे अंजाम आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वेटलिफ्टिंग से आएंगे. हमेशा ये पीछे रह जाते थे क्योंकि हम शूटिंग के 15-20 मेडल देख लेते थे या फिर कुश्ती में 10 मेडल या 12 मेडल आ जाते थे, तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे. उनके मेडल्स यही रहते थे, 7 या 8 मेडल होते थे उनके, लेकिन बाकी खेल आगे हो जाते थे. अब की बार फोकस उन पे रहा, सारा ध्यान उन पे रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है. पॉजिटिव साइन यह है कि पिछले 10-12 साल में भारत सरकार बहुत पैसा लगाई है खेलों में और उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा पैसा लगाने में. 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है खेलो इंडिया मिशन को लेके, बहुत पैसे लगेंगे स्पोर्ट में. और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस देश में स्पोर्ट खेलने लायक हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हम खेलेंगे तो कुछ पैसा बना सकते हैं.
1: आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एशियन गेम्स अब सिर्फ 1.5 महीना दूर है, जहां पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां के बड़े बड़े नाम होंगे और इन बड़े बड़े नामों के साथ भारतीय एथलीट्स का मुकाबला होगा. तो ग्लासगो में जो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस है, उन्हें देश और खेलों की संख्या के हिसाब से इस बड़े स्टेज के लिए तैयारी में कितनी मदद मिली है?
0: मदद तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन आप एथलेटिक्स में देखेंगे कम से कम 30 मेडल आएंगे आपको एशियन गेम में, और शूटिंग जब वापस आ गया है और हमारे कुछ पहलवान मेडल लाएंगे तो मुझे लगता है फिर एक बार हम 100 मेडल के आसपास आएंगे, 100 भी पार करेंगे. पिछले बार 100 पार कर गए थे हैंगजो में, और जापान में जब जाएंगे मुझे लगता है कि 100 मेडल के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम से. तैयारियां सही रही है, कुछ अच्छे एथलीट्स विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, कुछ को अपने ही घर में अच्छी शिक्षा मिल रही है. ओवरऑल पॉजिटिव है और मुझे लगता है एशियन गेम्स में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और 2 महीने बाद हम शायद सेलिब्रेट करेंगे कि एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन रहा.
1: जी राजारमन, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच.
2: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी

0: राजा रमन कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: सुर्खियों में
2: FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। रात के 8:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

नमस्कार, फिल्म संगीत में मैं आदेश शिंदे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रोताओं, प्रेम एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के हृदय में अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। न कोई शोर, न कोई हड़बड़ी, बल्कि धीरे धीरे कोमलता के साथ यह भाव मन में पनपता है। हिंदी फिल्म संगीत ने सदैव इसी सूक्ष्म और मधुर अनुभूति को अपने गीतों में बड़ी संवेदनशीलता से पिरोया है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे ही कुछ गीत लेकर आए हैं जो प्रेम के इसी कोमल और आत्मीय स्वरूप को व्यक्त करते हैं। आरंभ करते हैं इसी भाव के साथ, जहां प्रेम अत्यंत मंद गति से बिना किसी हड़बड़ी के हृदय में प्रवेश करता है। यह गीत उसी अनकहे अनजाने आकर्षण को शब्द देता है जो धीरे धीरे परिचय से आत्मीयता की ओर बढ़ता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म झूम बराबर झूम का यह गीत,

श्रोताओं, जैसे जैसे यह प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, वैसे वैसे उसमें कृतज्ञता और समर्पण का भाव आता है। जब आगे बढ़ती है प्रेम की यह यात्रा, तो दूरियों को भी समीपता में बदल देती है। कभी कभी प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल कुछ कदम ही पर्याप्त होते हैं दो हृदयों को एक दूसरे के निकट लाने के लिए। यही भाव इस अगले गीत में अत्यंत सरलता और गहराई के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत है फिल्म पीके का यह गीत।

प्रियजन के साथ का यह एहसास मनुष्य को यह अनुभव कराता है श्रोताओं कि जीवन में यदि कोई अपनापन मिला है तो वह किसी वरदान से कम नहीं है, और इसी वरदान की भावुक अनुभूति को समर्पित है हमारा अगला गीत, जो कि है फिल्म जंगली से।

और श्रोताओं, अंत में जब प्रेम अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है तो वातावरण भी मानो उसी के साथ मिलकर एक नया सौंदर्य रच देता है। रात्रि की शीतलता, मौसम का सुहावनापन, ये सभी प्रेम के इसी परिपूर्ण क्षणों के साक्षी बन जाते हैं। इसी मनोहारी दृश्य को हमारा अंतिम गीत बड़ी खूबसूरती से चित्रित करता है।

श्रोताओं, इन्हीं प्रसन्न भावों के साथ आज के फिल्म संगीत को यहीं विराम देते हैं और इसी मधुर एहसास के साथ आपके मित्र आदेश शिंदे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8:44 और ठीक 50 सेकंड्स हुए हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: polls to the three constituencies was held on the 30th of last month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expanded his cabinet today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office to 19 new ministers at a simple ceremony at Lok Bhavan in Bengaluru. D.K. Shivkumar assumed office as the Chief Minister on the 3rd of June, along with 13 other ministers. His cabinet size has now reached 33. The only woman legislator announced by All India Congress Committee, Gayatri Shanti Gowda, was not sworn in today, and another legislator, Manakal Vaidya, was replaced by S.S. Mallikarjun at the last moment. Former Chief Minister Siddaramaiah was conspicuous with his absence at the swearing-in ceremony. Reacting to a few legislators expressing disappointment for not making it to the cabinet, Chief Minister D.K. Shivkumar said that it is not possible to accommodate everyone and assured them of opportunities in the future. The Tamil Nadu government has approached the Supreme Court seeking directions to the Karnataka government for immediate release of the share of Kaveri water to Tamil Nadu. Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by the Kaveri Water Regulation Committee, as well as that released by its neighbour Karnataka, was far less. A committee meeting held on the 28th of last month directed Karnataka to release 3,500 cusecs for 15 days, starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Water Management Authority later. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology today met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticised Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologise for this, and if he does not do so, then the safe harbour protection under Section 79 should be withdrawn from him. The BJP MP also accused Meta, YouTube and X of failing to adequately address issues related to their algorithms and content moderation. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today held a meeting with Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiar Saidov in Delhi. He highlighted that bilateral relations between India and Uzbekistan have expanded over the years and span a diverse range of domains today.
1: We share a commonality of views on international and regional issues, particularly when it comes to terrorism, extremism and drug trafficking. We cooperate in a number of bilateral and multilateral forums. We deeply appreciate that the government and people of Uzbekistan have taken a strong stand on combating terrorism in all its forms and manifestations. Both of us have shown zero tolerance towards sanctuaries and cross-border terrorism.
0: Mr. Saidov also called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. President Draupadi Murmu today said education is the foundation of character building, social transformation and nation building. She called upon universities to nurture ethical, skilled and socially responsible citizens. The president inaugurated the Jagatguru Kripalu University at Cuttack in Odisha today. President Murmu said educational institutions will play a decisive role in achieving the goals of Viksit Bharat 2047 and a Viksit Odisha 2036. The situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK worsened overnight as protesters refused to disperse and security forces opened fire on demonstrators. Reports from POJK said the security forces launched a midnight crackdown on protesters with gunfire reported in Rawalkot. An intelligence bureau official said the reported gunfire came as scores of women and children joined the ongoing protest. Many women and children have remained at the protest site for the past 50 days, with dozens more joining them yesterday. People from across POJK have joined the agitation, which is now spreading rapidly across the region. According to Human Rights Council of POJK, as of yesterday, a total of 80 fatalities have been documented. Iran today said there are no talks underway with the United States and no plans for any meetings, contradicting U.S. President Donald Trump, who had said negotiations through intermediaries were scheduled for today. Earlier, speaking to reporters aboard Air Force One, Mr. Trump said diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and Iran had led him to halt what was originally planned as a massive attack. The India Meteorological Department, or IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days and in Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. Young cyclist Harshita Jhakhar rode into history books by becoming the first Indian woman to be a part of the Tour de France FAMA in Switzerland. The 19-year-old led a pack of 8 talented cyclists from Afghanistan, Algeria, Chile, Ethiopia, with 2 riders, Namibia and Uganda, during the ceremonial start at Stage 2 of the Grueling race yesterday. The event started on 1st of this month in Lausanne and will end on the 9th August in Nice. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on cyber fraud and cyber security, safeguarding the digital citizen. During the program, listeners can ask questions on telephone numbers 011-2371-7117, 011-2371-7106. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Vadodara, Gujarat. Congress keeps Dathia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी, छोटी और दरमियाना दर्जे की सदनों की तरक्की के तरमीमी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है। असेंबली इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मुंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। कर्नाटक के वजीर डी के शिवकुमार ने उन वजरा शामिल करके काबीना में तौसी की है। आसाम में कल तक बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पीओजेके में रात में सूरत हाल बदतर हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिन्होंने तितर बितर होने से इनकार कर दिया था। नौजवान साइक्लिस्ट हर्षिता झाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनकर पहली भारतीय खातून बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौजूदा तादाद 33 बढ़ाकर 37 करना है। इन 37 जजों में भारत के चीफ जस्टिस शामिल नहीं हैं। इस साल मई महीने में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया था। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क्यादत में रिफॉर्म यानी इस्लाह रिफॉर्म यानी कारकर्दगी और ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव का मंत्र मौसर तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जनाब मेघवाल ने कहा कि अदालती शोबे में जारी इस्लाही अमल में ये बिल अहम कदम है।
3: आज परसों के विधेयक भी न्याय क्षेत्र उसी सुधार संस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से अमेंडमेंट बिल में सभा सहित अन्य न्याय संख्या 34 किए जाने प्रदान किया गया।
2: इससे पहले अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मुख्तलिफ मामलों पर एहतजाज के दौरान लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरक खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद बिरला ने सवाल चलाने की कोशिश की, तहम अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान की गई मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन को अराकन की जानिब से जानबूझ कर रखना अंदाजी करने पर तशवीश का इजहार किया। पेश रिपोर्ट।
4: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से नियम मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर हंगामा आरई की वजह से आज एक बार फिर पड़ा। लोकसभा को 3 मरतबा जबकि राज्यसभा को मरतबा मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आरई की वजह से दोनों ऐवानों में सवाल नहीं चल सका। तमाम शोरगुल और हंगामा के दौरान लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद के मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: इस दौरान शुमारियात और ग्रांट नफाज के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय शुमारियाती इदारा बिल 2026 पेश किया। वहीं वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर भी शवाहिद 2026 पेश किया। दूसरी जानब राज्यसभा ने हंगामा आरई दौरान माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट कानून 2006 में मजीद तरमीम करना है। वहीं इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर और तनाजों के इजाले के तरीकेकार को बनाना है। जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के उमूर खारजा के वजीर साइदोव बख्तियोर राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनाब ओदिलोविच और उनके वफ्त का राष्ट्रपति भवन में खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और तहजीबी तालुकात हैं जो कदीम तजारती रूट से वाबस्ता हैं। उन्होंने उजागर किया कि फन तामीर, जुबान, रवायती पकवान, मौसीकी और मजहबी रवायात में मुश्तरका सकाफत ने बाहमी शराकतदारी को मजीद इस तरह काम बख्शा है। जमहूरिया ने यह उजागर करते हुए इस बारे में मुस्तैद किया कि उज़्बेकिस्तान के 3,000 से ज्यादा हुक्काम, पेशावर अफराद और तालिब इल्मों ने भारत के तकनीकी और इक्तिसादी तआवुन ITEC प्रोग्राम के तरबियती कोर्सेज और दीगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल किया है। सदर मुर्मू ने मजीद कहा कि 16,000 से ज्यादा भारतीय तालिब इल्म उज़्बेकिस्तान में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि ये तालिब इल्म दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल के तौर पर काम करते हैं और बाहमी मफाहमत और मजबूत आवाम से आवाम के रबतों को बेहतर करते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज उजागर किया कि भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में पिछले बरसों में तरक्की हुई है और आज बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों में वो हैसियत रखते हैं। इनमें तामीर, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबे शामिल हैं। दिल्ली में उज़्बेकिस्तान के वजीर खारजा बख्तियोर साइदोव के साथ मीटिंग के दौरान अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $1 अरब की बाहमी तजारत है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात पर, खासतौर पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात की नाजायज तजारत के ज़िम्न में एक जैसे नजरियात रखते हैं। असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा में मंजलपुर नशिस्त पर अपनी जीत बरकरार रखी है। यहां उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई राबड़ी को 30,000 से ज्यादा वोटों की औसत से शिकस्त दी। ये सीट सीनियर बीजेपी MLA और गुजरात के सबक वजीर अखिलेश पटेल के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी, जहां ज़िमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
5: वोटों की गिनती के तमाम 30 दौर मुकम्मल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने, जो सतीश पटेल के नाम से भी मारूफ हैं, 55,481 वोट हासिल किए। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार दीपा भाई रबारी को 24,851 वोट मिले। इस सीट के लिए मैदान में सिर्फ उम्मीदवार ही थे,

0: से बीजेपी का मजबूत गढ़ समझा जाता है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबिक काउंसलर सतीश पटेल ने कहा कि अवाम ने एक बार फिर बीजेपी में अपना भरोसा जाहिर किया है। जुमे को 260 पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 37.5% वोट डाले गए थे। बीजेपी कानून साज असेंबली योगेश पटेल के इंतकाल के बाद इंतजाम जरूरी हो गया था। आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद से अपना खुद रिपोर्ट के साथ मैं तौहीद हक्कानी।
1: जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जीत हासिल की है। ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां 1995 के बाद से बीजेपी को शिकस्त का सामना नहीं हुआ था। यहां किशोर ने अपने करीब तरीन बीजेपी के हरीफ नीरज कुमार को 19,000 से ज्यादा वोटों के औसत से दी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के राज्यसभा में उनके इंतखाब के बाद ये सीट खाली गई थी, जहां जिमनी इंतखाबात जरूरी हो गया था। एक रिपोर्ट।
2: प्रशांत किशोर ने वोटों की गिनती के पहले ही दौर से बकत बरकरार रखी, जो तमाम 31 राउंड तक जारी रही। उन्हें मजमू तौर पर डाले गए वोटों में से 49.23% वोट हासिल किए। बीजेपी के नीरज कुमार 34.40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 10.45% वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के सबक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जिम्मे हुआ है। बीजेपी को 35 की में पहली मरतबा हार का सामना करना पड़ा। जिमनी इंतखाब में मजमूई तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दातिया सीट बरकरार रखी है, जहां जिमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन हरीफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के औसत से हरा दिया। इन तीन हलकों में जिमनी इंतखाबात लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। कर्नाटक में गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हल दिलाया। वजीर आला डी के शिव कुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, वो काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिव कुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। खबरें आकाशवाणी से नकल की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निजाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 86वें मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उपलब्ध हुए सिक्योरिटी और की चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो की जाएगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले एक अहद पर यकीन रखते हैं। जब मकसद कोई वाहिद हो तो निजाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों एक ही कमिटमेंट है। प्रथम नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति आपकी सामर्थ्य में बदल जाए। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर के बीच स्ट्रक्चर क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मीशत के कलीदी शोबों में पैदार मुतालबे नीज माल बर्दारी लॉजिस्टिक और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकात कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारत मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था।

0: इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल फाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मतलब नहीं है। मक्की ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर मजहबी दौरे पर इराक हैं, इसके अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब बकाई ने मजीद कहा फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुरमुस के इंतजाम से मुतालिक मुजाकरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने असम, मेघालय, जिले हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले दो से तीन दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, महाराष्ट्र, उड़ीसा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में जुमेरात तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और शिमाल मशरकी खित्ते में कल गरज चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJ में सूरत हाल रात में अबतर हो गई क्योंकि एहतजाजियों ने तितर-बितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। POJK से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौ उम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साल हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सब आजमा रेस में अफगानिस्तान, नाइजीरिया, चिली, इथियोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनत तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिले इंतखाबात में जजराज के लीडर किशोर ने बिहार की कुर्सी पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में वडोदरा की मंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर जीत हासिल की। इसी के साथ खबर का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी,
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए,
0: जी,
1: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन यह है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
0: जी।
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
1: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो, अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
0: जी,
1: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहां कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
0: जी।
1: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
0: जी।
1: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
0: उसके बारे में
1: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
0: जी,
1: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए। बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
0: जी।
3: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
1: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
0: जी,
1: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा, और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब एफडी 7% देती है, और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
0: जी,
1: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए कर मैंने 12,300 तो भैया
0: पहले ही काट लिया।
1: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12% इंटरेस्ट। तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
0: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
4: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
4: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
0: जी सवाल पूछिए।
4: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
1: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
0: जी
1: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो इंटरनेट पर

0: वो सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो, कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है, मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूट में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है जी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
3: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, क्या कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये।
0: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है। इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी इसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज्यादा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
4: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
4: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा तहसील जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
4: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
4: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
4: अरे बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है क्या, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूं, उन्हें कह रहा हूं कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि साहब बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए या ये यहां पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है। फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं, और 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारः से मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला बैंक जाते
1: बैंक में जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा

0: जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है
2: आपका? जी मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिलाएं हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है ये इंटरमीडियरीज है, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशन या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है, यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
3: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
3: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
3: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं फिर आपके नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं, और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंटों में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल

0: ये 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप उसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना जरूरी है, और डुप्लीकेट से बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी।
2: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गौरीनगर इंदौर से ख्वाहिशमंद लोग, आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। और इसी गीत को पसंद किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

नारायणपुर बाबा पट्टी बलियासी ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइनी शर्मा, हमारे ये सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में, आनंद बख्शी की रचना है और संगीत से सजाया है नदीम शर्मा ने।

शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा खान रानी, हिना करा। और एक और पत्र हमारे हाथ में है, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज शिमाली। और नेपाल पैलेस सागर से हमें पत्र लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल हैं और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक की आवाज में आइए सुनते हैं साजन फिल्म का गीत, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश सापले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश और हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रही, महराज जहां, जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीतल धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड भानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और एक और पत्र मेरे हाथ में है जो आया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोतले, आरती जोतले और उनके साथियों का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे सपने साजन के फिल्म का ये प्यारा सा गीत, समीर के बोलते हैं और नदीम श्रवण का संगीत। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में भुवनेश कोमकली का ख्याल गायन, राग है मियां की मल्हार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे भुवनेश कोमकली का ख्याल गायन, राग था मियां मल्हार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है।

दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिर भी हम फालतू की चिंता करते रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसा होगा।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, किसी का साथ होना बहुत ही अच्छी बात है, पर किसी के साथ पर डिपेंड हो जाना वो गलत है। अगर कोई साथ नहीं भी है तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। संबंध फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म पेइंग गेस्ट से।

दोस्तों, हमारी जिंदगी अपने ही परिवार के कार्यों में ही बीत जाती है, उसी में हम पूरा दिन लगा देते हैं। पर दोस्तों, जीना तो वो है जब हम दूसरे के लिए जीते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म बादल से ये गीत।